एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारा आज का प्रसारण

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आरंभ करते हैं देश वंदना से।

अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में आपने सुना ये शिव भजन। और अब लीजिए पेश है लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की ये भक्ति रचना।

लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में आपने सुनी पंडित नरेंद्र शर्मा की ये भक्ति रचना। अब लीजिए पेश है उषा मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: उषा मंगेशकर की गाय इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बात। इसमें आज जानकारी, खेती में जैविक उर्वरक का उपयोग, इस विषय पर वाचन स्वर अभिनव गौराहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। किसान भाई हो, खेती के बात में हम आप मन ला आने बानी के विषय बतात रिथन, जेमा ऐसन विषय रिथे जेमा कैसे खेती किसानी में आय ला बढ़ाया जाए और खेती किसानी के खर्चा ला घटाया जाए, ऐसन व्यवस्था रहते। आज यही क्रम में हम आप मन ला बताबो जैव उर्वरक का होते, ओखर का उपयोग होते और कैसे खेती में उपयोग होते। जैव उर्वरक मन ऐसन पदार्थ होते जौन में सूक्ष्म जीव होते, जौन मन पौधा के आवश्यक पोषक तत्व के आपूर्ति बढ़ा के पौधा और पेड़ के वृद्धि ला बढ़ावा दिए में मदद करते। एमा शामिल जीव जौन मा माइकोरिजल कवक, नीला हरा शैवाल और बैक्टीरिया शामिल होते। माइकोरिजल कवक पौधा पर कार्बनिक पदार्थ से खनिज ला प्राथमिकता देते, जबकि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विशेषता रख। अब जानबो जैव उर्वरक मन के कौन कौन सा प्रकार होते और का काम करते। हम हमेशा राइजोबियम कल्चर के बात करथन। राइजोबियम जीवाणु समूह से संबंधित होते और एकर उदाहरण सहजीवी नाइट्रोजन मतलब नत्रजन स्थिरीकरण के काम होते। जीवाणु फलीदार पौधा के जड़ ला संक्रमित करते और जड़ के गांठ बनाते, जेखर अंदर ओमन आणविक नाइट्रोजन ला अमोनिया में बदल देते, जेखर उपयोग पौधा मूल्यवान प्रोटीन, विटामिन और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक के उत्पादन करे बर करते। सहजीवन के स्थान जड़ के गांठ के अंदर होते। ये अनुमान लगाया जाते कि राइजोबियम के सूक्ष्म जीवी गतिविधि द्वारा विभिन्न फलीदार फसल द्वारा 40 से 250 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष स्थिर करे जाते। तो हमला दलहनी फसल लगाथन ओमा नत्रजन के स्थिरीकरण होते, ओकर पहले हमला राइजोबियम के उपचार करना चाहिए। दूसर बात करबो एजेटोबैक्टर। ये महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक जीवाणु होते। एकर उपयोग सबो गैर फलीदार पौधा विशेष रूप से धान, कपास, सब्जी मन बर करे जा सकत जैव उर्वरक के रूप में। तीसर होते जो स्पाइरिलम, ये बैक्टीरिया से संबंधित होते। एक गैर फलीदार पौधा जिसे अनाज, बाजरा, तिलहन, कपास ये सब फसल मनमा राय 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के सीमा में नत्रजन के काफी मात्रा में ठीक करे बर जाने जाते। अगला बात करबो साइनोबैक्टीरिया। एक कोशिका से लेके कई कोशिका वाले जलीय जीव के समूह होते हैं। यही ला नीला और हरियर शैवाल के नाम से जानथन हमन। अगला बात करबो एजोला। ये मुक्त रूप से तैरे वाले जलीय फर्न होते जो उन्हें पानी में तैरते और नत्रजन ला वातावरण से स्थिर करे वाले नीला हरा शैवाल एना बेना जोला के संग मिलके वायुमंडलीय नत्रजन ला स्थिर करते। एजोला के पत्ता में एक तैरत हुए प्रकंद और छोटे ओवरलैपिंग द्विखंडित पत्ती और जड़ होते। धान के फसल में नत्रजन के योगदान के मामला में एजोला संभावित जैव उर्वरक माने जाते। हरियर खाद के रूप में एकर खेती बहुत पहले से होते। एजोला के उपयोग सुअर और बतख जैसे पालतू

0: जानवर के चारा के रूप में घलो करे जाते। हाल के दिन में एजोला के उपयोग पशुधन विशेष रूप से डेयरी मवेशी मुर्गी पालन सुअर पालन मछली पालन बर विकल्प के रूप में करे जाते। ट्राइकोडर्मा की बात करी ये पौधा ला बीमारी से बचाए वाले एक महत्वपूर्ण जैविक एजेंट है जो माटी में पनपे वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव ला खत्म करते। माइकोराजा के बात करी एक कवक होते जौन जरई मन के चारों कति रही के उखर वृद्धि ला बढ़ाते जेकर से पानी जिंक और सल्फर के भूया ले पेड़ तक बेहतर अवशोषण हो पाते। आखिर में हम बात करी एनपी के कंसोर्टिया एम ऐसा सूक्ष्म जीव होते जो नत्रजन स्फूर और पोटास तीनों के उपलब्धता ला फसल पर एक संग बढ़ाते। तो किसान भाई हो कुल मिला के अगर हम जैव उर्वरक मन के उपयोग करी भूमि उपचार मा बीज उपचार मा खासकर अभी खरीफ मा खरीफ के मौसम आते धान के फसल लगाबो आखिर में हम देखथन की आनी बानी की रोग राय हमार फसल में लग जाते और हमन ला कुल मिला के आनी बानी के रासायनिक जिनिस के उपयोग करना पड़ते जेखर से पैसा के खर्चा होते। खेती में हमन ला चाहे कि हमन खर्चा ला घटाए और फायदा ला बढ़ाए तो ये सब जिनेस के लाभ हमन ला लेना जरूरी है चाहे हम बीज उपचार करें चाहे हम भूमि के उपचार करें तो ये सब के फायदा आप मन बिल्कुल ले। तो संगवारी हो ए होइस आप मन ला आज आनी बानी जैविक जिनिस मन के बात बताएं आगू के क्रम में और ऐसा है सुघर सुघर खेती के विषय ला लात रही बो। राम राम जय जोहार।
1: खेती में जैविक उर्वरक का उपयोग इस विषय पर आपने सुनी जानकारी कार्यक्रम खेती की बात में वाचन स्वर अभिनव गौराहा का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। पेश है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरन का है। संगीत संयोजन किया है सतीश भाटिया ने।
2: एपिसोड 184 184।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थी। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते। दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगी।

रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरन का था। संगीत संयोजन किया था सतीश भाटिया ने। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नवविहान। इसमें आज चर्चा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर।

बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ BBBP भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से आरंभ किया गया था। बालिका संवर्धन और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें लिंगानुपात में सुधार, घटते बाल लिंग अनुपात CSR और लैंगिक भेदभाव को दूर करना जैसे प्रमुख बिंदु निहित थे। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और बालिकाओं का संरक्षण सुनिश्चित करना इस योजना के मूल में निहित तत्व हैं। साथ ही साथ बालिका शिक्षा को संरक्षण देते हुए बालिकाओं के अधिकार और शिक्षण में सुधार करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है। बेटी

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जागरूकता बढ़ाकर सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके बालिकाओं और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध एक सशक्त कदम है जो बालिका के जीवन रक्षा सहित शिक्षा स्वास्थ्य और उनके अधिकारों को गुणवत्तापूर्ण रूप से प्रसारित करता है। आरंभ में ये

कारों को गुणवत्तापूर्ण रूप से प्रसारित करता है। आरंभ में ये अभियान भारत में 100 लैंगिक रूप से संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था, जो अब भारत के सभी जिलों तक विस्तारित हो चुका है। इस अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना से बालिकाओं को जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त आधार प्रदान किया जा रहा है, जो बालिका के उच्च अध्ययन और उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़िए और इस अभियान से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाइए।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय पर आपने सुनी चर्चा कार्यक्रम नवविहान में। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा 7:05 पर। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अमराई प्रसारित होगा 8:30 पर। इसमें आप शेख हुसैन, उमा सोनी, अमचिर्री बाई और शैल बाला धुर्वे के गीतों का आनंद ले सकेंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:00 से और फिर 11:30 से और फिर दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक। फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद सुनिएगा 10:00 से। प्रस्तुति होगी पद्मा मणि की। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित होगा दिन के 11:00 से।

संध्या 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा जगत प्रसारित होगा शाम 5:35 से। इसमें आज की बात होगी नेत्रदान पखवाड़ा और मेजर ध्यानचंद पर। साथ ही क्रम सामयिकी सुनवाया जाएगा। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनिएगा 6:20 पर और फिर 7 बजे से।

ईद मिलाद उन नबी और ओणम। साथ ही रेशम कीट पालन से लाभ विषय पर श्री अनिल कुमार कश्यप, सहायक संचालक रेशम जांजगीर चांपा से ली गई भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। भेंट करता होंगे पंचू भैया। साथ ही सुनिएगा क्रम आकाशवाणी गांव में और मंडी मौसम पर जानकारी प्रसारित की जाएगी। प्रस्तुति और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन का होगा। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में कलाकार होंगे भूपेन हजारिका। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:30 पर। इसमें बेरा के गोठ का विषय होगा बागवानी फसलों की वर्षाकालीन देखभाल, ईद और मिलादुन नबी और ओणम विषय पर चर्चा होगी। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत से सुनिएगा 6:20 पर और फिर 7 बजे से। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:30 पर। इसमें बेरा के गोठ का विषय होगा बागवानी फसलों की वर्षाकालीन देखभाल,

0: सः अध्यक्षतां कृतवान्। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीमप्रश्ने राजनैतिकसमाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य अक्टूबर मासे कजान नगरे, गतवर्षे अगस्त मासे त्रियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्तृकार्यविभागस्य सचिवा निधिखरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्लीनगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिकटन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, NCCF तथा केन्द्रीयभण्डारकेन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरई, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है, साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

लोग जन्म से महान होते हैं और कुछ कर्म से महान बन जाते हैं। दया, प्रेम और मानवता के गुणों का मूर्त रूप, जिन्हें हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, आज उनकी जयंती है। धर्म, जाति आदि भावनाओं से ऊपर उठकर जिन्होंने मानवता की सेवा को धर्म और कर्म बनाया, दुखी, निराश्रित, परित्यक्त विकलांग जनों की सेवा करना जिनका सहज स्वभाव था, ऐसा विरल व्यक्तित्व था मदर टेरेसा का। आपने यूगोस्लाविया की होने पर भी भारत को अपनी कर्मभूमि चुना, तब यहां साधनों का भी अभाव था। सेवा के मार्ग में चलते हुए उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, पर अपने दृढ़ विश्वास और करुणा के बल पर वे सीमित साधनों में ही सेवा कार्य जारी रखी और मानव कल्याण में लगी रही। आपने सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी

सेवा कार्य से सभी को लाभान्वित किया और ख्याति अर्जित की। सेवा कार्य में अनेक संघर्षों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। उनका विचार था कि हमें स्मरण रखना होगा कि हम जो कुछ भी करें सब गरीब और असहाय की मदद के लिए करें। प्रत्येक बस्ती में भूख और गरीबी से त्रस्त पुरानी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी हमारी ही तरह इंसान हैं, उन्हें भी हमारी तरह जीवन जीने का अधिकार है। हम इस बात को सदैव स्मरण रखें और कभी न भूलें। सेवा कार्य करते हुए मदर टेरेसा ने अनेकों लोगों को अपनी सेवा से राहत पहुंचाई और लाभान्वित किया। मदर टेरेसा जी की जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, आज एक और खास बात है और वो है केरल का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण फसल उत्सव ओणम, जो प्रतिवर्ष मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम में मनाया जाता है। ये पर्व 10 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत अत्तम नक्षत्र से होती है और इसका समापन सबसे महत्वपूर्ण दिन तिरुओणम से होता है। ओणम पर्व राजा महाबली के स्वागत और भगवान विष्णु के वामन अवतार की स्मृति में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता और विश्वास है कि इन दिनों राजा महाबली अपने लोगों से मिलने धरती पर आते हैं, घरों को सुंदर रंगोली पुकलम से सजाया जाता है और इसकी खास बात यह है कि प्रतिदिन एक एक वृत्त और फूलों की संख्या इसमें बढ़ाई जाती है। ओणम सद्या ये एक पारंपरिक महाभोग है जिसमें केले के पत्तों में 26 से अधिक प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। ओणम पर्व का विशेष आकर्षण नौका दौड़ भी है। सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव का ये पर्व हम सभी के जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी कामना करते हुए हम सभी श्रोताओं को ओणम पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें।

0: और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
2: मैं हूं उमाशंकर पांडे, लीजिए सुनिए हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती अर्थात मुस्लिम पर्व ईद मिलादुन नबी है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुस्लिम भाई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मना रहे हैं। यूं तो यह पर्व हमेशा ही धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है, पर इस वर्ष और अधिक रंगारंग आयोजन हो रहे हैं। इस क्रम में कई समूहों द्वारा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली जा रही है। इसमें पहली बाइक रैली प्रातः 8:30 बजे जूनी लाइन खपरगंज से प्रारंभ होगी, जो मध्य नगरी चौक, मसानगंज, सत्यन चौक, अग्रसेन चौक, मगरपारा, मरी माई कब्रिस्तान चौक, लिंक रोड, तारबहार, तितली चौक, जगमा चौक, गांधी चौक, महाराणा प्रताप चौक, भारती नगर चौक, सत्यम चौक होते हुए जूनी लाइन पहुंचकर संपन्न होगी। वहीं दूसरी बाइक रैली दोपहर 2 बजे तोरा चौक से चलकर गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक होते हुए ईदगाह चौक पहुंचकर संपन्न होगी। जबकि तीसरी बाइक रैली ग्रामीण क्षेत्र की है, जो आज प्रातः 9 बजे गतौरा से चलकर पंडी, लगरा, उर्तुम, झरमला, सीपत, नवाडी, गुड़ी, नरगुड़ा होते हुए मचखंडा पहुंचकर संपन्न होगी। इसके अलावा शहर में आज एक विशाल पैदल रैली भी निकाली जाएगी, जो दोपहर 2 बजे सत्यम चौक से प्रारंभ होगी, अग्रसेन चौक, लिंक रोड, तारबहार, गांधी चौक, कोतवाली चौक होते हुए गोल बाजार स्थित मदीना मस्जिद में नमाज पश्चात रैली पुनः देवकीनंदन चौक, बृहस्पति बाजार, राजनगर चौक, लिंक रोड होते हुए ईदगाह पहुंचकर मगरिब की नमाज बाद रैली संपन्न होगी। मित्रों, आज ही मलार में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रातः 10 बजे बूढ़ा देव मंदिर शिव सागर तालाब से रैली निकलकर बरमदेव चौक, नंदमहल चौक, राम जानकी मंदिर, मेला चौक, पुलिस चौकी से होते हुए मंगल भवन, दिग्नेश्वरी मंदिर के पास पहुंचकर सभा पश्चात रैली संपन्न होगी। सभी बाइक या पैदल रैली में चल रहे प्रत्येक सदस्यों से अनुरोध है, पूरी सड़क में बिखर कर न चलते हुए एक भाग में चलें, कतार में चलें। एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर उसे तत्काल साइड दें। बाइक रैली वाले 3 सवारी न चलें और हेलमेट पहनकर शहर में मिसाल पेश करें। विशेषकर इन मार्गों में चलने वाले वाहन चालक अपने वाहन धीरे चलाएं, सुरक्षित चलाएं, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर अभी आपने सुना। श्रोताओं, रबी उल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। ये वही पाक महीना है जब अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए नियत रहमत बनाकर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। इस पाक मौके पर हर मोमिन नबी से अपने मोहब्बत का इजहार करता है। सच्चे मुसलमान की मोहब्बत अल्लाह और रसूलों के बताए तौर तरीकों के मुताबिक होती है। आज के दिन अनेक स्थलों पर मोहम्मदी जुलूस निकाला जा रहा है। मान्यता के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। ईद मिलादुन नबी का त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 3rd महीने रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है। ये दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन के आदर्शों, दया, न्याय और उनके भाईचारे के संदेशों की याद दिलाता है। اسے مولد یا مولد النبی اش شریف یا

शावफात के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मस्जिदों और घरों में विशेष इबादत, कुरान की तिलावत और नात शरीफ का आयोजन किया जाता है। कई स्थानों में अमन और भाईचारा का संदेश देते हुए जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाता है। लोग इस दिन नफल रोज़ा भी रखते हैं और खैरात दी जाती है। घरों को सजाया जाता है, तरह तरह की मिठाइयाँ, सेवई और व्यंजन बनाए जाते हैं। हम सभी श्रोताओं को रमजान पर्व की और ईद मिलादुन्नबी की बधाई और शुभकामना देते हैं।

ओणम और ईद पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब आज सुबह कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।

आज सुबह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम यादों के झरोके से। कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश के स्वर में भरत व्यास ने गीत लिखा है, सरदार मलिक का संगीत है। पेश है सारंगा फिल्म का ये गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 27 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923 और 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 अगस्त को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और अब फिर रुक करते हैं यादों के झरोखे से कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। ये गीत है लता मंगेशकर किस्वर में, असद भोपाली ने गीत लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पेश है पारसमणि फिल्म का ये गीत।

0: आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में राजेंद्र कृष्ण का लिखा, चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया, पतंग फिल्म का ये गीत।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है शकील बदायूनी का लिखा 20 साल बाद फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: यादों के झरोखे से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है आशा भोसले के स्वर में शकील बदायूनी का लिखा, हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया, साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का ये गीत।

यादों के झरोखे से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है आशा भोसले के स्वर में हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, शिकार फिल्म का ये गीत।

0: समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल ऐप

0: @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोडमैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण

0: कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री

0: to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Kaimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। पेश है छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम का पहला गीत उमा सोनी के स्वर में।

अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है शेख हुसैन और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत।

अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 27 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के

सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 28 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। लीजिए पेश है अमराई कार्यक्रम का अगला गीत शैल बाला धुर्वे के स्वर में।

अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत अमचिर्री बाई के स्वर में।

अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है शेख हुसैन और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत।

दरिया गाले संग मा जाबे तरिया जाबे वो गुलगुल भजिया खाली गुलगुल भजिया खाली गुरी तय धनिया डोली मोर संग तय हरदा दरिया गाले मन के गुरी मोर संग तय हरदा दरिया गाले संग मा जाबे।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। दिल तो बच्चा है जी, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुणाल गांजावाला की आवाज है, संजय छल ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। 26 अगस्त एक ऐसी महान महिला का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के नाम कर दिया। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजीजू, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। भारत आकर उन्होंने गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है किसी जरूरतमंद के काम आना, सुनते हैं ये गीत।

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा

0: देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: चित्रलोक में वक्त है एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में इश्क विश्क फिल्म का गीत, समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये केंद्रित

रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर 9:30 पर, और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार,

समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्तल की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। डीजे आज्ञा पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहाँ भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया। वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट रहता था। कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहां से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है। तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक। तो 5 साल का सफर उनके साथ जुड़ा रहा। तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है। तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नेहरानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का। तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की। जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रिशक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी। वो आई और चले गई, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: लेकिन आपकी अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ, बल्कि किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहाँ ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुनाया इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज़ किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर में बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर बढ़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखाया कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वो डिसीजन लिया। और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
0: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा बरस से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले

0: कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था
1: जी
0: पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कुछ सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में, कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जिसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है।
1: जी
0: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये,
1: जी
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है,
1: जी
0: कोई फ्लैट नंबर है क्या।

0: स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये,
1: जी
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये Page 3 समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है,
1: जी
0: कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये,
1: जी
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि Page 3 होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने के मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज 3 उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देखिए।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से प्रदेश में वर्षा में कमी आ सकती है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। वित्त विभाग से भी इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। शासन ने निर्धारित आरक्षण और नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58% और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257% की दर से महंगाई राहत दिया जाएगा। पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। राजधानी रायपुर में कल स्कूल शिक्षा विभाग की एक दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। इस बैठक में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षक केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही न आए बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में आने वाले समय में छात्राओं के लिए 8,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। 20 सितंबर को होने वाली सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को न्यायिक अधिकारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष या अंतरिम रूप से 61 वर्ष करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से ये परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आज पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। आज राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। कल मंगलवार को राज्य के बस्तर, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। बड़े बचेली में 17, राजिम में 11, बीजापुर में 9 सेंटीमीटर और मंदिर हसौद में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से वर्षा में कमी आ सकती है। कल छत्तीसगढ़ शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने रैली निकाली। इन शिक्षकों ने अपनी 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनमें टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग शामिल है। रैली के पश्चात इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार से प्रदेश में वर्षा में कमी आ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का बिलासपुर के

अब पेश है आज की मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए

केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुत कर रही हैं पद्मा मणि।

0: नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के हेलो आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। आइए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते।
1: गंगानगर फेस्टो बिलासपुर मंगला से मैं उमा शंकर पांडे बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं उमा शंकर जी?
1: बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ। अभी लगातार वर्षा हो रही है। लोगों से मेरा एक कहना है, वृक्षों से हमारा गहरा रिश्ता है।
0: बिल्कुल।
1: और अभी बरसात में पौधारोपण करने की मुहिम चली है, लोग अधिक से अधिक लगा रहे हैं। लेकिन इसे मेरा ये कहना है, हर साल हम शुरू में पौधे लगाते हैं और भूल जाते हैं रिकॉर्ड बना करके, लेकिन वो पौधे सुरक्षित नहीं रह पाते, सूख जाते, मर जाते हैं। यदि इस साल हम ये अभियान चला लें कि जो पुराने पौधे हैं उसको हम सुरक्षित कर लें, उसकी लिट्री गार्ड या किसी प्रकार की व्यवस्था करके, ताकि वो बढ़ जाए। हर साल हम पौधे लगाने का रिकॉर्ड ना बनाए, पौधे को बचाने का भी रिकॉर्ड बनाए, जो पौधे हैं वो वृक्ष बन सके। लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए, ये करें। इस संदेश के माध्यम से मेरा आम लोगों से ये कहना है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं और सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पर्यावरण की सुरक्षा सभी को चाहिए। और अभी देखिए बारिश की वजह से एक और परेशानी भी हो रही है कि जगह जगह गड्ढे हैं और पानी भर जाता है, तो मच्छर का प्रकोप भी इस वक्त बहुत बढ़ता है।
1: हाँ ये भी है। हाँ
0: तो उससे भी थोड़ा सा बच के रहें और ताजा भोजन करें, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है इस वक्त।
1: हाँ अभी वायरल फीवर का भी चल रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को सजग होना चाहिए।
0: पांडे जी बताइएगा आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में और गीत के बोल हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। ये गाना सुनना चाहूंगा मैडम।
0: बिल्कुल, आप तक पहुँच रहा है आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं इंद्र भान जी?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम। और यहाँ तो अभी खूब पानी गिरा और उसके बाद में ही मतलब कि छाए जगह में पेड़ के पास खड़ा हूँ, आपसे बातचीत हो रहा है। और सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: इसके अलावा अभी तो क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी, तीजा और गणेश पूजा भी आ रहा है आगामी, तो उनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और तो ठीक है मैडम, तो आज मैं जल्दी से, क्योंकि नेटवर्क न कटे, तो मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है अनपढ़, और गीत के बोल रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, गायिका लता मंगेशकर।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। योगेश जांगड़े बेमेतरा छत सिरवा बांधा बेमेतरा से।
0: कैसे हैं योगेश आप?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
0: बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: सब खेती बाड़ी काम है,
0: क्या लगा है अभी खेतों में?
1: धान लगाए हैं और निंदाई कोड़ाई है, खाद वगैरह है, कार्य है अभी फिलहाल।
0: और अभी जब खेतों में जाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग जाते होंगे, सांप बिच्छू इन सब का बहुत डर रहता है इस वक्त।
1: सामना होता ही है।
0: हाँ बिल्कुल, उनका भी तो समय है, ये वो भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, उनका भी अधिकार है। तो
1: जी
0: कैसे आप लोग बचाव करते हैं? पैर में क्या बूट्स वगैरह पहनते हैं, कैसे करते हैं?
1: हाँ जी, जूता रहता है। और अब कई लोग तो देखिए खेत में धसकर भी काम करते हैं, तो एक आदत से हो गया है।
0: हाँ, फिर भी बचाव बहुत जरूरी है। यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: हाँ
0: चलिए
1: जी,
0: बताइएगा, गीत कौन सा सुनेंगे?
1: रक्षाबंधन पर बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, ये वाला प्यारा सा गीत।
2: बहना

0: हेलो जी,
1: हेलो
0: बताएं कौन बोल रहे हैं।
1: हेलो, आपकी पसंद का कार्यक्रम है ना,
0: बिल्कुल, हेलो। आपकी पसंद के कार्यक्रम में ही फोन लगा है आपका।
1: मगर पारा बिलासपुर से राजेश शुक्ला बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं राजेश जी,
1: ये बढ़िया ठीक चल रहा है।
0: क्या करते
1: बरसात
0: हैं
1: का,
0: आप?
1: मैं रिटायर्ड बैंक अधिकारी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी रिटायरमेंट का मजा ले रहे हैं बरसात के साथ साथ।
1: हाँ, मौसम ऐसा है कि बाहर से निकलने नहीं हो पा रहा, इतना पानी है, घर को
0: कई
1: परेशानी कर दिया पूरा।
0: बिल्कुल कई इलाकों में पानी भर भी जा रहा है, लेकिन इसका कारण
1: हाँ जी,
0: कहीं ना कहीं हम ही हैं। पॉलिथीन वगैरह नालियों में छोड़ देते हैं,
1: हाँ,
0: सफाई ठीक
1: जाम
0: से
1: कर
0: नहीं हो।
1: देते हैं।
0: जी बिल्कुल, इसी वजह से पानी का
1: हाँ
0: भराव हो रहा है, हमें ख्याल रखना
1: हाँ
0: होगा इसका।
1: न नालियां जाम हो जाती है, पॉलिथीन डाल देते हैं, कचरे डाल देते हैं, हर जगह कूड़ादान लगा हुआ है,
0: हाँ, घर
1: और
0: घर भी
1: उसमें
0: व्यवस्था है अभी तो।
1: घर में कचरे की गाड़ी जाती है, उसके बाद भी रोड में फेंक देते हैं कचरा, और हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते, जबकि कोरोना से एक बार भुगतान भूख भुग चुके हैं, भोग भोगी हो चुके
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: इन सब का ध्यान रखना होगा हम सभी को।
1: ये सफाई का विशेष ध्यान होना जरूरी। महात्मा
0: बिल्कुल।
1: गांधी जी ने यही कहा गया था, और प्रधानमंत्री जी भी उसे फॉलो अप करते हैं।
0: बताइएगा गीत कौन सा सुनवा दें।
1: मैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा, धर्मेंद्र जी की याद में।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: हाँ बताइए प्रेम सिंह जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी उज्जैन में तो महाकालेश्वर की आराधना, अभी सावन का टाइम, सोमवार, और सबकी बहुत धूम होगी वहाँ।
1: हाँ जी बिल्कुल, हर तरफ महाकालेश्वर बाबा के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, और बड़ी दूर दूर से मतलब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और सभी के लिए मतलब काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे रास्ते
0: हाँ
1: काफी चौड़े हैं, और आने जाने के लिए जगह जगह पे साइन बोर्ड लगाए गए हैं जो दर्शाते हैं कि महाकाल मंदिर इस साइड में है, ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिले। जी,
0: बिल्कुल। चलिए
1: और जगह जगह पे आपको ना बताऊँ, निःशुल्क भंडारे भी लगाए हुए हैं, जहाँ पर कांवड़ यात्रियों के लिए खाने और रहने की जगह निःशुल्क दी जा रही है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बाहर के जो यात्री, तीर्थ यात्री जो आते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। बताइएगा गीत कौन सा सुनवा दें।
1: जी, फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और गाने के बोले राधा तेरी चुनरी।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन बोल रहे हैं?
1: हम बात कर रहे हैं राम कुमार जायसवाल।
0: कैसे हैं राम कुमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये जूना पारा।
0: चलिए, पसंद बता दीजिए, उसी का इंतजार होगा आपको।
1: क्या है, अब रक्षा बंधन का त्योहार आ गया है तो उसी उपलक्ष्य में सुना दीजिए कोई शादी गाना।
0: बिल्कुल, आपकी कोई पसंद हो तो बताएं।
1: मेरे चंदा, मेरे भैया, मेरे अनमोल राजा,
0: रत्न। बिल्कुल, आप तक

0: हेलो, आपकी पसंद से मैं पद्मा।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं? कौन बोल रहे हैं?
1: मैं आपका निवेश वर्ता प्रिय भाई राधेलाल ग्राम पहुँच से मैं बोल रहा हूँ। दीदी
0: कैसे हैं राधेलाल जी?
1: बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप आशा भी करता हूँ मैं भी आप आकाशवाणी बिलासपुर के सभी सभी कर्मचारी सब कुशल मंगल से होंगे।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी परिवार
1: और रक्षाबंधन त्योहार पे सभी जने को ढेर सारा शुभकामनाएं है। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कहते हैं कि सभी श्रोता वाले लोग त्योहार में बहुत बहुत उत्साह मंगल से खुशी मनाने की कृपा करेंगे और किसी से वो न करें आने जाने में रास्ते में, क्योंकि जल्दीबाजी हर बिराड़ी नहीं करना है। दीदी
0: बिल्कुल, अभी तो बस वगैरह वो तो खूब ठसा ठस भरे रहते हैं। बहनें जा रही हैं अपने भाइयों के पास या भाई कहीं पे आ रहे हैं बहनों के पास, और खुद के वाहन तो है ही।
1: बहन भी आती है अपने भैया के पास, तो थोड़ा समय निकाल करके 10 मिनट 5 मिनट जैसे दूरी हिसाब से पहले से समय निकाल करके चलना होगा दीदी, क्योंकि हड़बड़ी से इसमें काम बहुत बिगड़ता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करते हुए सभी को ध्यान रखना है। चलिएगा, गीत बता देंगे
1: मिलन फिल्म का, सावन का महीना पवन करे शोर वाला।

रे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: हेलो,
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं भाटापाड़ा जतरंगी ले बुलाते हैं दीदी। हीरू राम साहू,
0: कैसे हैं हीरू राम जी?
1: हम लोग तो सब ठीक ठाक है बहनी। ये देखे थी, खड़े काम में लगे हैं बहनी जी।
0: क्या क्या काम चल रहा है अभी?
1: अभी वही धान पान चला ही निंदाई कोड़ाई जा रहा है दीदी।
0: और बारिश में जब निकलते हैं तो ख्याल रख रहे हैं अपना?
1: हाँ रखना है ना बहनी, चल के लगते हैं ना झिल्ली छत्ता लगते हैं बहनी जी।
0: हाँ, जरूरी है क्योंकि अभी वायरल वगैरह फैलता है बहुत जल्दी, बुखार सर्दी जुकाम होता है। चलिए गीत बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे?
1: अब दीदी का अभी राखी का माहौल है दीदी, तो राखी

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी। मैं धनगांव गोसाई मुकेश गोस्वामी बोलो।
0: कैसे हैं मुकेश जी?
1: बढ़िया हूँ दीदी।
0: कहाँ पड़ता है आपका ये गांव?
1: जिला मुंगेली, मुंगेली से 15 किलोमीटर, तखतपुर से 15 किलोमीटर।
0: अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: मैं तो घर में रहता हूँ दीदी, नेत्रहीन हूँ मैं जी। आप पद्मा दीदी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ, मैं पद्मा दीदी बोल रही हूँ। रेडियो आपका साथी है अभी, है ना? तो इससे
1: जी
0: अच्छा
1: दीदी,
0: मित्र कहाँ
1: रेडियो
0: होगा।
1: हमारे साथी है, उसी में हमारा मनोरंजन होता है।
0: मनोरंजन भी है, जानकारियां भी है, देश दुनिया की खबरें भी हैं। चलिए, तो
1: हाँ
0: आप अपनी पसंद का गीत भी सुन लीजिएगा रेडियो के माध्यम से। बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: जी, पहले तो आकाशवाणी बिलासपुर की सभी श्रोता को और आकाशवाणी बिलासपुर को आने वाली रक्षाबंधन आते कमर्थक सबका मुकेश गोस्वामी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: राखी आने वाला है दीदी, तो हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म का गीत है। फूलों सतारों

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: जी, आप नारवानी हूँ, चौका बड़ा कैंप से।
0: कैसे हैं नारवानी जी?
1: बहुत बढ़िया हूँ, आपसे बहुत दिन बाद बात होते तो दिल खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल, हमें भी इंतजार रहता है श्रोताओं के फोन कॉल्स का और ईमेल्स का, चिट्ठियों का। संपर्क हो जाता है तो फिर बहुत खुशी होती है। बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं आज?
1: बस अच्छा, बने कह रही है, बाजार में दुकान सज गई है, बहने कहियो की आ गई है।

0: खुशी होती है। बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं आज?
1: बस रक्षाबंधन कहा है, बाजार में दुकान सज गई है, बहनें कईयों की आ गई है, कईयों की आने वाली है, कई भाई लोग जाएंगे बहनों के पास रक्षा राखी बंधवाने।
0: रक्षा सूत्र
1: जी, रक्षा सूत्र तो क्या है, बहन जब बांधती तो एक रक्षा कवच बन जाता है भाई के लिए,
0: ये बहुत जरूरी है। और सरहद पे जो हमारे सैनिक है उनके लिए भी हम भेजते हैं हमेशा।
1: बिल्कुल, उनकी वजह से हम लोग आज जी रहे हैं, अपनी सांस ले पा रहे हैं, सब इनकी मेहरबानी है जो दिन रात डटे रहते हैं,
0: सुरक्षित हैं हम उन्हीं की वजह से।
1: जी, हम आजाद घूमते हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। सलाम है उनको। बस यही कहूंगा कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कम नहीं होता, अक्सर इससे दूर से फीक पड़ जाते हैं, और भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता,
0: दिल से दिल के तार हमेशा जुड़े रहते हैं। बताइएगा गीत कौन सा सुनवा दें?
1: बस एक बात है कि रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा शाही है, खुशियों के स्वागत सौगात लेकर बहना राखी बांधने आई है। ये गाना सुने के मुझे आज चंबल की कसम फिल्म का, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। पेश है ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
4: मैं हूं उमाशंकर पांडे, लीजिए सुनिए हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती अर्थात मुस्लिम पर ईद मिलादुन नबी है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुस्लिम भाई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मना रहे हैं। यूं तो यह पर्व हमेशा ही धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है, पर इस वर्ष और अधिक रंगारंग आयोजन हो रहे हैं। इस क्रम में कई समूहों द्वारा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली जा रही है। इसमें पहली बाइक रैली प्रातः 8:30 बजे जूनी लाइन खपरगंज से प्रारंभ होगी, जो मध्य नगरी चौक, मसानगंज, सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, मगरपारा, मरीमाई कब्रिस्तान चौक, लिंक रोड, तारबहार, तितली चौक, जगमा चौक, गांधी चौक, महाराणा प्रताप चौक, भारती नगर चौक, सत्यम चौक होते हुए जूनी लाइन पहुंचकर संपन्न होगी। वहीं दूसरी बाइक रैली दोपहर 2 बजे तोरवा चौक से चलकर गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक होते हुए ईदगाह चौक पहुंचकर संपन्न होगी। जबकि तीसरी बाइक रैली ग्रामीण क्षेत्र की है, जो आज प्रातः 9 बजे गतौरा से चलकर पंदी, लगरा, उर्तुम, झलमला, सीपत, नवाडी, गुड़ी, नरगुड़ा होते हुए मछखंडा पहुंचकर संपन्न होगी। इसके अलावा शहर में आज एक विशाल पैदल रैली भी निकाली जाएगी, जो दोपहर 2 बजे सत्यम चौक से प्रारंभ होगी, अग्रसेन चौक, लिंक रोड, तारबहार, गांधी चौक, कोतवाली चौक होते हुए गोल बाजार स्थित मदीना मस्जिद में नवाज पश्चात रैली पुनः देवकीनंदन चौक, बृहस्पति बाजार, राजनगर चौक, लिंक रोड होते हुए ईदगाह पहुंचकर मगरिब की नमाज बाद रैली संपन्न होगी। मित्रों, आज ही मलार में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में प्रातः 10 बजे बूढ़ा देव मंदिर शिव सागर तालाब से रैली निकलकर बरमदेव चौक, नंदमहल चौक, राम जानकी मंदिर, मेला चौक, पुलिस चौकी से होते हुए मंगल भवन, विघ्नेश्वरी मंदिर के पास पहुंचकर सभा पश्चात रैली संपन्न होगी। सभी बाइक या पैदल रैली में चल रहे प्रत्येक सदस्यों से अनुरोध है, पूरी सड़क में बिखर कर न चलते हुए एक भाग में चलें, कतार में चलें। एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर उसे तत्काल साइड दें। बाइक रैली वाले 3 सवारी न चलें और हेलमेट पहनकर शहर में मिसाल पेश करें। विशेषकर इन मार्गों में चलने वाले वाहन चालक अपने वाहन धीरे चलाएं, सुरक्षित चलाएं, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
3: ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

तो ये था हमारा आज का हेलो आपकी पसंद, जिसमें हमें तकनीकी सहयोग मिला गौरी शंकर कौशिक का। तो अब चलते चलते यही कहेंगे, स्वस्थ

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
3: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
3: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
3: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
3: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
3: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी, कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
3: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
2: जी,
3: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
2: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक

0: ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हंदले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हंडले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हंडले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी आपने बिल्कुल सही बताया, पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हंडले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
0: जी,
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हंडले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल, एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
0: जी,
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
0: जी,
1: हंदले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हंडले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं।

0: समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी,
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम।
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने

0: में बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी, शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी धोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी जी।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, तैयार है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
13: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
12: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
6: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई।

और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, सुखविंदर सिंह, आनंद राज आनंद और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अजय अतुल का, फिल्म का नाम है अग्निपथ।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अगला एल्बम गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, गीत संगीत है ललित का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी एल्बम गीत सुनिए, गायक और संगीतकार अदनान समी की आवाज में। गीतकार हैं समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली गजल समाप्त कीजिए गायक और संगीतकार चंदन दास की आवाज में, कलाम है इब्राहिम अश्क का।

बेवफा तू है कभी मैं न कहूँ।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और उसके बाद हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: मीडियम न्यूज और आकाशवाणी का
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में टेट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार कर रहे हैं और प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की EKYC की प्रक्रिया शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल 27 अगस्त को देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र होगा जिसके माध्यम से युवा अपने विचार आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में टेट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे शिक्षकों की मांग पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

0: उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला है। अभी सरकार मध्य प्रदेश जैसी विभागीय परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की ईकेवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। ईकेवाईसी के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम का मिलान अनिवार्य होगा। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिए अपनी ईकेवाईसी करा सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने बताया कि मौसमी इन्फ्लुएंजा आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों में जटिलताएं होने का खतरा अधिक रहता है। उन्होंने ऐसे लोगों को अधिक सावधानी बरतने और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दी। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद ए मिलाद उन नबी और ओणम के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह अवसर दुनिया भर में एकता और खुशी को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की उपस्थिति में कल 27 अगस्त को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगी। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच 27 से 29 अगस्त 2026 तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल सीजीएसएसपी द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने की जुड़ी सिफारिशों पर सहमति जताई। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह छठी बैठक थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
2: माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया

0: मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

कार्यक्रम है यादों की महफिल, और इस महफिल का झिलमिलाता हुआ अगला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है गीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आज हम और आप मिलकर सुन रहे हैं कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी नगमात। तो अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत है आनंद बख्शी का। गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

बस रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है उजाला।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे संगीत से संवारा है शंकर जय किशन ने। गीत के बोलों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

लीजिए सुनिए संगीतकार रोशन के संगीत से रोशन ये कवाली गीत। आवाजें हैं मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों की। शायर हैं साहिर लुधियानवी। फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम सुनने के लिए जरा इबारत ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो जो श्रोता फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग फेसबुक पेज पर नहीं हैं, उनके लिए हम इबारत जरा पढ़कर सुना देते हैं। जिंदगी में मिलती है जो मोहब्बत की घड़ी, तो दिल नील गगन की सैर करता है। वो पुरानी यादों की ही मेहरबानी है, सावन की

बूंदें जब बरसती हैं, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे मनमीत बन जाते हैं, और बासंती पवन पागल बनकर बहती है। यहाँ पर कोई गाना याद आया? कौन सा गाना याद आया? हमें वैसे लगता है कि बासंती पवन पागल एक ऐसे कम ही गाने जिनमें ये तीनों शब्द आते हों, लेकिन अगर आपको याद आए तो बताइएगा जरूर। बहरहाल आगे जरा पढ़ दूं तो दिल पूछ बैठता है कि ऐ संदली हवा तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में। तुम्हारे इंतजार में चंपा कली देखो जो कि जाए है, इस मौसम में कपट का कोई काम नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, जब ऐसा लगे कि सजनवा बैरी हो गए हमार, तब भी वही पुरानी हंसी याद आ जाती है जो कभी लाल लाल होठों से छलकती थी, मतलब लाल लाल होठुआ से छलकती थी। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया आपको? कोई लोकगीत है, याद कीजिए, फिल्मी लोकगीत, तलत महमूद की आवाज है। हमने हिंट भी दे दिया, पर आखिर में जब मन थकता है तो भक्ति ही सहारा बनती है। हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो, ये आस हमेशा रहेगी कि गंगा मैया में जब तक पावन धार बहेगी प्रीत अमर रहेगी, मतलब गंगा मैया में जब तक, आगे बताइएगा। घाट पर ढलते शाम में जैसे कोई पुकारता है, नदी नारे न जाओ शाम, पर लहरों के सन्नाटे में बस यही मलाल रह जाता है कि नदिया किनारे हेराई आई कंगना, जो छूट गया वो समय की धारा में बह गया, पर उसकी सुरमई गूंज आज भी यही ठहरी हुई है। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपने इबारत पढ़ी थी, अब जब इबारत अपने आप से पढ़ी थी, जब मेरे मुंह से सुनी ये इबारत तो आपके भीतर कुछ अलग भाव भी पैदा हुए होंगे। अब बहुत सारे भाव हैं इसमें, तो अब उन शब्दों को याद कीजिए जिन शब्दों से गाने आपके जहन में इस समय आ रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे श्रोता नदी के बारे में लिख रहे हैं, तो हाँ नदी तो है इस शब्द में, नदी वाले कौन से गाने आपके जहन में वो भी बताइए, और ये भी बताइए कि किस नदी के किनारे आपका घर है, मतलब आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, आपके गाँव में कौन सी नदी बहती है, ये भी बताते चलिए। और हाँ, ये जो बातें हैं गंगा मैया की बात भी इसमें है, गंगा मैया वाले कौन से गाने हैं वो जरा साझा कीजिए, और गंगा मैया से जुड़ी कौन सी याद है आपके भीतर। चलिए अब यादें और बातें साझा करते रहिए, लेकिन अब जरा सुनिए गाना और पहली भी बूझिए कि इस गाने में कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। फिल्म आंखें, जिन्हें हीरो हीरोइन का नाम नहीं पता वो बता दें गीतकार संगीतकार का नाम। आंखें फिल्म का गाना, फटाफट बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

आखिरी फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल रवि का संगीत था, और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गाँव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में माँ नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है, शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से ऊबे या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहां तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नजदीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहरहाल जरा हम श्रोताओं की टिप्पणियों पर आ जाएं। हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत तो शब्दों का गुलदस्ता है जिसे पढ़ते ही मन में पुराने सदाबहार गानों की महफिल सज गई है। इस जादुई लिखावट में छुपे कुछ बेहद प्यारे गाने सीधे दिल को छू रहे हैं, जिन्हें आज दोपहर 1 बजे सुनने का इंतजार रहेगा। नील गगन की सैर करता है याद आता है फिल्म आम्रपाली का वो खूबसूरत गाना नील गगन के तले। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे सुनते ही कानों में रस घोलता है, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और आगे लिखा है, ऐ संदली हवा तू कहाँ ये बता, फिर सीधे जोड़ता है इस नगमे में पूरी इस हमारी इबारत को गानों से इन्होंने जोड़ दिया है। और अंत में ये भी लिखा है, चंपा कली देखो झुकी जाए, किशोरदा की शरारती आवाज। और कुछ श्रोता ने लिखा है कि वाह भाई, मेरी 10-12 गानों में से पहला गाना ही शामिल हो गया। गनीमत है कि आपने शिकायत नहीं की कि मेरी पसंद का गाना शामिल नहीं हुआ। चलिए, हो सकता है आपका गाना शामिल हो जाए, मतलब आप सभी में से। तो आप अपनी पसंद लिखते रहिए, और ये है हमारी पसंद और आप सबकी पसंद। बताइए जरा, गीतकार और संगीतकार का नाम, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना, फिल्म उसने कहा था, और रिमझिम बरसात से जुड़ी हुई कोई खास बात है वो भी साझा कीजिए आप।

भाई आज तो गानों की बहार सी आई हुई है विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं की ओर से, एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ूं, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिल लुधियानी और रवि शायद ये अगले गाने के लिए लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था, उसने कहा था फिल्म में गीतकार संगीतकार कौन है, शैलेंद्र और सलिल चौधरी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। एक श्रोता ने नदी के लिए लिखा है, हमने पूछा था आपसे कि आपका शहर या गांव किस नदी के किनारे बसा है या आपके घर के पास कौन सी नदी है। हमारे श्रोता ने लिखा है गंगा बनारस शहर। एक श्रोता ने लिखा है ओ गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ से, मचलती हुई हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। क्या बात है, बहुत सारे गाने हमारे श्रोता हमें याद दिला रहे हैं। हालांकि ये

ये सारे गाने हमारे जहन में हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गाने आपको याद आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर या गांव के पास नदी नहीं है, बहुत दूर है वो। और एक श्रोता कहते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। एक श्रोता ने लिखा है, गंगा सबकी मैया है, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया की पूजा करवाने ले जाते हैं। पीली साड़ी, मांग में पीला सिंदूर, पीला नहीं बल्कि उसको मटिया सिंदूर बोलते हैं, जो नारंगी रंग का होता है। और बहू को गंगा जी के किनारे पीली साड़ी से ही गंगा मैया की पूजा की जाती है और अपना आंचल फैलाकर सुहाग मांगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो बनारस से हूं, वहां गंगा नदी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो जबलपुर में मां नर्मदा जी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मायका सांगली है, वहां कृष्णा नदी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में दो नदियां हैं, एक का नाम गंभीरी और दूसरी का नाम बीडच नदी। गंभीरी नदी प्रसिद्ध नदी है, जो पन्ना धाय के समय प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर उदय सिंह जी को छुपाया गया था। भाई, नदियों के बारे में अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास नदी तो नहीं है, लेकिन डैम 3-4 हैं, वो भी जंगल पहाड़ से घिरे हुए। और एक श्रोता कहते हैं कि मेरे खंडवा शहर में छोटी आबना और बड़ी आबना नदी बहती है, वही 60 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा बहती है। छोटी और बड़ी आबना जहाँ खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वहीं माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक, आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूँ तो वहाँ गोमती नदी बहती है, और कानपुर ससुराल है तो यहाँ गंगा नदी बहती है, जो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहाँ नर्मदा नदी, क्योंकि हम MP वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहाँ ये बता, चंपा कली देखो, नदिया किनारे है राई, आई कंगना मैं न भूलूंगा, मैं न भूलूंगी, सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया, लेकिन तलत महमूद का गाया हुआ गाना आप लोग सुनाते ही नहीं है। तो अभी जो गाना सुनवाया था, फिल्म उसने कहा था, उसमें भी तलत महमूद की आवाज थी। अब चलिए ये गाना भी सुनिए, जरा देखिए किसकी आवाज है, और हमें गीतकार संगीतकार का नाम जरूर बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, लागी नहीं छूटे रामा। गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है।

तो भाई आप बताइए कि आवाज किसकी है, लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी वाली आवाज किसकी है? तो आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं?

लागी नहीं छूटे रामा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था मजरूह सुल्तानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत हैं और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गांव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सोंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गांव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गाँव या शहर इस नदी के किनारे। जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती है। तो जरा बताइए कि पिछले दिनों आप कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में हैं जहां पर नदी से घड़े घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं, वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहाँ पर एक ये संदेश भी देना जरूरी है कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत जरूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रखकर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम मां समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं, या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल, और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। ये गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

ओ बसंती पवन पागल, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, ये सवाल भी हमने पूछा था और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था, पद्मिनी और राज कपूर। और ये भी हमने पूछा था कि कहाँ पर ये गाना फिल्माया गया है। सभी श्रोताओं ने क्या, बहुत ज्यादा तादाद में श्रोताओं ने जवाब सही दिया, जबलपुर के भेड़ाघाट में फिल्माया गया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम के साथ ये नदियों की चाल भी बदल जाती है। जब बारिश आती है तो जमीन बदल जाती है, गर्मी से सूखे तालाबों में पानी का गलीचा बिछ जाता है। मौसम कोई भी हो, वो अपने प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में रहता है, इसलिए मौसम के साथ छल छद्म करने का कोई काम नहीं। बारिश में नदी की लहरें अपने उफान पर रहती हैं और लहरों के वेग में भी संगीत का तरन्नुम हवाओं में तिरता रहता है। मौसम का जादू आधा आसमान में खिलता है और आधा जमीन में। शायर बशीर बद्री के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है।

अब एक श्रोता ने लिखा है कि गांव दूर है शहर से 40 किलोमीटर, सड़कें आ गई इसलिए आते जाते रहते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि नदी की बातें आप सभी ने लिखी हैं, तो आप सब में से कौन वो लोग हैं जो अक्सर नदी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, घुमाते हैं और उनसे नदी के बारे में बातें करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात होती है तब मन चाहता है ऊपर के कमरे में खिड़की खोल दें, एकांत हो, रिमझिम बूंदे शरीर पर पड़े और भूतकाल में मन कहीं खो जाए, उन कभी न भुलाए जाने वाले पलों में एक बार फिर खो जाए। काश कि ऐसा होता कि उन पलों के समय ही हमें ये पता होता कि आने वाली

जिंदगी के लिए ये ही पल अविस्मरणीय है, लेकिन हमारी जिंदगी वास्तविकता कुछ और ही है। जिंदगी में कभी भी समय एक सा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन बात नदियों की बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे श्रोता नदियों की बातें कर रहे हैं और नदी वाले गाने भी लिख रहे हैं, तो चलिए ये गाना सुन लिया जाए। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार और संगीतकार। फिल्म मुझे जीने दो।

मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आज लंबे शीर्षक वाली फिल्मों के गाने शामिल किए गए हैं। अब ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो गाने लिख रहे हैं, आज हम वो गाने चुन चुनकर बजा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गाना शामिल हो तो आप लिखिए अपनी पसंद इस प्रोग्राम में। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हम खूब मस्ती के साथ सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव आज भी बहुत भाता है, पर गांव में आज भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, खासकर अगर सीनियर सिटीजन है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी वगैरह बहती है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे शहर से जीवन दायिनी माँ नर्मदा नदी गुजरती है, जो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में लगभग 1380 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। एक श्रोता ने गानों की फरमाइश, बहुत सारे गानों की फेहरिस्त लिखी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब नदियों की बात चली है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम वाघ है। वहां के पानी में तांबा मिला हुआ रहता है, इस कारण वहां पर भारत का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का काम किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज

जिससे करीब 10 साल पहले हम घूमने गए थे। जब वहां से लौट रहे थे तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी। हम वही घंटों इंतजार करने लगे कि पत्तों की सरसराहट हो, बिजली का चमकना, पानी की बूंदें टप टप कर गिरी। जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो दिन याद आ जाता है। और मेरे शहर के पास गंगा नदी बहती है और गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नदी बहती है। और अब लेकिन हम यहाँ पर नदी का गाना तो लेकर आए हैं और बहुत सारे श्रोता भी नदी वाला गाना लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाएगा। एक तरीका है, कुछ बातें माँ सिखाती हैं कि ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, और नैतिकता की बातें माँ पिता सिखाते हैं। लेकिन बचपन में एक जो कमाल की बात होती है वो झूठ बोलना। कोई इससे वंचित नहीं रह पाता है। कभी शक्कर चुरा के खा लिया तो झूठ बोलना पड़ा, कभी पाउडर वाला दूध चुरा लिया तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग चुपके से फिल्म देखने चले जाते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कहीं पैसे रखे हैं वो चुरा के आपने कुछ चाट चटपटे खा लिए। तो ऐसी कौन सी घटना है आपके जीवन में, आपके बचपन में, वो जरा बताइए बेबाकी से और ईमानदारी से बताइएगा कि कब, किस लम्हे में, किस घड़ी में आपने झूठ बोला। तीसरी कसम फिल्म का गाना है, झूठ मत बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ वाली बात जरूर बताइए। मुकेश की आवाज।

इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।

निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। और जरा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूं, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूं और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पौना राम नदियां हैं। अब बात गंगा जी के निहारने की चली है तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन जरा पहली बूझिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है लेकिन बचपन बड़ा भोला मासूम होता है, वहां ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी। और ये हमारा सवाल था गंगा मैया, ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है, शैलेंद्र और चित्रगुप्त। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलेक रखा रहता था जो चोरी कर

लेके मैं खा जाती थी, मम्मी डांटती थी, पर दीदी ने समझाया कि ये छोटू बेबी का है, फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी। और ये जो चोरी है, दूध पाउडर या सेरेलेक, तो मुंह पर लगा रह जाता था, तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने पिताजी से बचपन में 1 रुपए के लिए झूठ बोला था, वो मार पड़ी कि अभी तक याद है, जीवन भर याद रहेगा। और ऐसे ही जो बातें हैं वो आपको नैतिकता भी सिखाती हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं, जो डांट पड़ती है, मार पड़ती है, उससे आप अपने को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ाई, वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है, शीर्षक गीत है। इसे महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था, चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया था। और बात शैलेंद्र की चली है, इसी महीने में शैलेंद्र की जयंती आ रही है। अगर आपको तारीख याद है शैलेंद्र की जयंती की तो आप जरूर बताइए, इसी महीने में है। अब आगे बढ़े और आपको सुनवाए ये गाना, जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम। फिल्म है जिद्दी।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया।

और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में सुख दुख, खुशी या गम खुद की किस्मत अब कुछ पहले से तय है, नियति के परे कुछ भी नहीं, तभी तो वो हमें किसी अनजान से मिलाती है और ऐसे कि जैसे कभी अलग थे ही नहीं। संवेदनाओं के अंबार उमड़ते हैं जब उसके करीब या ख्यालों में खोते हैं। दुनिया में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रतीत होता है।

में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रतीत होता है, जो वियोग श्रृंगार के आध्यात्मिक भक्ति यानी लौकिक से अलौकिक की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ये भी इबारत से जुड़ी हुई बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन गानों को सुनते हुए मन बड़ा भावुक हुआ, क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब जरा सुनिए ये गाना और बताइए कि कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म तेरे घर के सामने। इस गाने का भी जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

अभिमान फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देव बर्मन का संगीत था, जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया, कम समय में दिया, सही दिया सचिन देव बर्मन, ये भी सही जवाब था। आज का सुरीला सफर प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर बस इतना ही।

0: नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है घर पर। साथियों, घर केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं का वो अनंत आकाश है जिसके नीचे जीवन अपने सबसे सुंदर रंग बिखेर रहा होता है। ये ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा भर नहीं, बल्कि स्मृतियों, संबंधों और संवेदनाओं का जीता जागता संसार है। घर वो जगह है जहां मन को सुकून मिलता है, आत्मा को अपनापन और हृदय को प्रेम का स्पर्श मिलता है। देखा जाए तो घर एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें संस्कारों में, तना विश्वास में और शाखाएं रिश्तों में फैली होती हैं।
1: दो दीवाने शहर में।

घर की छाया में व्यक्ति जीवन की तपती धूप से राहत पाता है। जब संसार की भाग दौड़ से थका हुआ मन लौटता है तो घर उसे उसी तरह अपने आगोश में समेट लेता है जैसे शाम ढलने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। घर की दीवारें निशब्द होते हुए भी बहुत कुछ कहती हैं। वो बच्चों की किलकारियों, बुजुर्गों की सीख, माँ की ममता और पिता के संघर्षों की साक्षी होती हैं। हर कमरा अपने अंदर एक कहानी समेटे रहता है। हर कोना किसी स्मृति का संरक्षक बन जाता है।

शायद यही कारण है कि घर से दूर जाने पर उसकी यादें मन के आकाश में चांदनी की तरह बिखर जाती हैं। घर एक भावना है, एक अनुभव है, एक अनमोल एहसास है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की हर भूमिका से मुक्त होकर केवल स्वयं बन जाते हैं, जहां जीवन की उथल पुथल के बाद मन को शांति मिलती है। अगर जीवन एक कविता मान ली जाए तो घर उसका सबसे मधुर छंद है। जीवन एक संगीत है तो घर उसकी सबसे सुरीली धुन है। ये वो जगह है जहां रिश्तों की सरगम गूंजती है और प्रेम की स्वर लहरियां वातावरण को मधुर बना देती हैं।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने

0: विषय केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंचीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
1: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
2: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आईएमए ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। आईएमए ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। आईएमए ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR AIEEPG और AICEPHD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली।

0: उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्त के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की आगरा स्थित एडीआरडीई द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।
1: कौन है जो

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं,

0: के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील

0: वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
2: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
2: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
4: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
2: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
2: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
4: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
4: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हम साया।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी, कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया। आपके पिता का नाम क्या है, बता दिया। आपके पति का नाम क्या है, बता दिया। आपके सब

0: कुंडलीपुरी बता दी, लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है। जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में पूछ कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता
1: हम महिलाओं को इन इन सवालों का सामना करना पड़ता है,
0: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
1: पुरुष जवाब दे।
0: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
1: हाँ, पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
0: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
1: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाएं, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
0: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खास तौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
1: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: और शब्द हमारा विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है, लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देख कर लगता है कि हम भी इसके इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है, लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
1: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल जाती
0: है
1: कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन,
0: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रहे हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाते हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है, लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले,
1: विकराल रूप ले ले,
0: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो, ईर्ष्या तो बताएं।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं,
0: दूसरों के बारे में।
1: उनके क्या विचार हैं या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से, अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं जिसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन से, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी मिठाई
0: हो सकता है। इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद मिलाद, तो ईद मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है, और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी, और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। और
1: और आज
0: आज
1: एक और खास दिन है, आज ओणम है, और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है, जो हर त्योहार पर की जाती है, और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है।
1: यानी उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता, बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग-अलग रंगों और विविधताओं से भरा

0: पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है ओणम
1: और ये
0: को।
1: पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना केले के पत्ते पर, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है, तो कितना स्वाद बढ़ जाता है।
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल। और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: इसकी ये खासियत है तो उसकी वो
1: वो
0: खासियत।
1: खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है।
0: और भरना भी नहीं चाहिए।
1: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है, और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भला किसे नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं
0: हाँ
1: कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे
0: यानी
1: जो
0: ओणम का त्योहार है तो क्यों ना हम केरल
1: केरल
0: की
1: की बात करें।
0: बालारामपुरम
1: तो बताइए क्या खासियत है।
0: साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
1: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
0: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
1: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है
0: जीआई टेक के रूप में।
1: इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है।
0: यानी
1: और
0: उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
1: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है, और राजपरिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था, और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
0: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
1: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते
0: और है
1: हैं।
0: ना वो ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के, जो जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और उसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
1: क्या बात है, वो
0: माहौल।
1: आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्त तो लगता है देखकर।
0: जी
1: अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें।
0: ये
1: इसके
0: सही
1: अलावा
0: जवाब
1: और
0: है।
1: कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में पड़
0: हमारे हाथ
1: जाएंगे।
0: जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
0: जी
1: टिप्पणी,
0: जी जी
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो
0: कितनी अच्छी
1: कितनी
0: दोस्ती।
1: अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। कि किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है।
0: उसके

0: कोई परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना, ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो ये ईर्ष्या नहीं जलन होती है।
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के। लेकिन एक ब्रेक के बाद

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है
0: और
1: कि अच्छा
0: अपना कोई
1: रहता।
0: खास तौर से
1: हाँ
0: अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है।
1: हाँ
0: लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी,
1: जी,
0: पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो
1: या
0: अच्छा।
1: फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती
0: हाँ,
1: थी, तब लगता था अरे ये हमारे टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और
1: और
0: हमारा
1: हमारा
0: नहीं
1: नाम
0: लेती।
1: नहीं।
0: ये एक सहज
1: हाँ
0: ईर्ष्या होती है, बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए क्या
1: जी,
0: लिखा है।
1: एक साथी कहती है मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है, और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: वही तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है। जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ो अगर उसे आंगन में क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई ये तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा, ऐसी बहाने साफ सफाई हो
1: साफ सफाई
0: जाती
1: हो
0: है। एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में, भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है। क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती है?

0: आप। भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात, अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
1: और अगर
0: तो
1: हम मेहनत करने लग गए
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गई। और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक
1: बस
0: ही हो
1: घर
0: गई
1: में
0: ना।
1: बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने
0: बिल्कुल।
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई। और
1: और
0: कई
1: व्यंजन भी नहीं लिखे
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे।
1: हाँ, कि आपके
0: और
1: घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि महिलाओं में ज्यादा होती है, महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है,
1: इस विषय पर बनी है
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं, ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई से सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी, कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है, पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है। ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की, मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है, अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम
1: उनके
0: खुद
1: नाम से पहचाने
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें
1: जी।
0: अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं, बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई, उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं 2 कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
1: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
0: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के,
1: डरती है।
0: हाँ, पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को

0: देकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा, लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने की प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं,
1: जी
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।

0: हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है, तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं, लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
1: हमारी एक और हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
0: पीछे
1: अपने
0: हटने
1: पीछे हट
0: लगते
1: जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है जैसी परंपरा
0: जो
1: चली आ
0: चल रहा
1: रही
0: है वो अच्छा है।
1: है। जी
0: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन-सहन के तरीकों से होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल, वो
1: तो
0: तो कौन सी
1: काजू
0: मिठाई।
1: कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार कर एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डाले, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना

0: जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार करें। एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें। मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दें और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दें। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाएं। गैस की आँच धीमी करें। छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाए। इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठें ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्के हाथों से तब तक मस ले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे। उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए।
1: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे, और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई है। हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम, बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
0: गाना सुनवा दे।
1: सुनवाते हैं
2: नहीं
1: एक
2: नहीं
1: बार।

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है, मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं
1: जी।
2: मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे
1: जी जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे, मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहाँ कहाँ शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
2: जी, जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरफ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था उन दिनों, बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया। और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली
1: जी।
2: छुटपन पे मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के

0: सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था,
1: बिल्कुल।
0: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरी बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहां पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे, वो कल्चर ज्यादा था। ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहां पे आपको बहुत बढ़िया आपको संयम भी दिखता था, वहां पे पोएट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहां जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी।
0: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ
0: फिर नेपाल है। फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
0: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहां तबादला हुआ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहां पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे, तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे, तो एक जो है अपनापन बन गया। टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को, और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ, क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था। जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ, ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने, इस बारे में कुछ बताएं।
0: तो उस समय बात है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, हार्वर्ड मेमोरियल करके, तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही है, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के, खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छुटपन में मेरे हाथों में, बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल,
0: तो किताबें दोस्त बन गई। और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं, मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया,
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने

0: कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया, हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, वो रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा एनुअल डे में, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाए, बॉम्बे कहते चले। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ, तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया
1: गया था।
0: तब मैं क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, मैं बॉम्बे ले जाना
1: चाहता।
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करो।
1: कोई नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है, बाकी सब प्रेमिकाएं तो छूट जाती है, रह जाती है, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना, मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है, वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें।
1: सुनवाते हैं गाना हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।

0: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
1: कमाल,
0: उसके बारे में कुछ बताएं। अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सब?
1: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
0: जी।
1: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
0: मेरा कल्चर,
1: मेरा शहर
0: जी,
1: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
0: जी,
1: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया, कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
0: बिल्कुल।
1: और
0: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
1: जी,
0: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभलें,
1: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच,

0: ना रुतबा है ना, अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है वो,
1: बिल्कुल
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है बल्कि हाथ देना है, उठाना है। अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे
1: बिल्कुल
0: हो।
1: बिल्कुल
0: तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे। तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है। तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है,
1: बिल्कुल
0: अकेले खड़ा होना चाहता है।
1: मैं सबसे
0: तो
1: अलग
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो। तो
1: बिल्कुल।
0: यहां जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहां पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना
0: अब मैं थोड़ा
1: जी
0: जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूं। आज का जो दौर चल रहा है,
1: हाँ
0: युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और SD बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, इसमें
1: सुनते हैं गाना।
0: जी।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की,
1: जी
0: 80s 90s से आप जुड़े
1: हाँ
0: हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं,
1: जी
0: थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी जी
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी जी
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम

0: टर्म यूज करें
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: यूज कर सकते हैं। तो कितना फर्क आया तब में और आज में, या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर
0: सब
1: किसी का
0: पैरेलल
1: स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं,
0: जी
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं।
0: जी
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
0: अच्छा
1: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं। वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं। ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है।
0: जी
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है, और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं।
0: जी
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में था श्रीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं, लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहां पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएसीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं,
0: बिल्कुल
1: उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए,
0: हाँ
1: वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट। तो वहां पे चकाचौंध दिखता है, अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है, और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
0: अपनी अपनी जगह
1: अपनी
0: पर।
1: अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो
0: जी
1: वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
0: जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो
1: जी
0: उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
1: जी जी जी अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके,
0: अच्छा
1: वो भी म्यूजिकल ही है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है, तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें,
0: जी
1: बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
0: अच्छा
1: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना
0: जी
1: कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने गाने आएंगे जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
0: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है।

0: और थिएटर पे करना।
1: देखिए ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है।
0: जी
1: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल
0: बिल्कुल
1: कमाल होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: जी
1: तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो
0: बिल्कुल
1: उनकी आंखें बोलती थी। अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: हाँ
1: तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। अब तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझ में पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब
0: बिल्कुल
1: टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
0: बिल्कुल
1: यह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत
0: बिल्कुल यहाँ पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
1: जी। एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है
0: बिल्कुल और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं
1: जी।
0: वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की। तो लेट 90s में आपकी
1: जी
0: शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से,
1: जी
0: हजार चौरासी की माँ, जो
1: जी
0: कि काफी पॉपुलर रही, को
1: चर्चित रही।
0: चर्चित रही कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था
0: जी
1: जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्धसत्या, जो करप्शन और फुल पुलिस सी व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक और मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा, कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था हल्का हिसाब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलकाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मेरे नाटकों के बारे में। और मैंने जो नाटक किया था विरासत करके, नाटक है वराचिरी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पर वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए।
0: अच्छा
1: जी टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देके बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर बातें भूल गया मैं, 2-3 साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, ए विशेस फॉर हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
0: अच्छा
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से।
0: अच्छा
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूं, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है। तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया। उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवल है, नॉवेला हजार चौरासी की माँ के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने तुम उनका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनैलिटी। मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो, तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया, अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, 3 तरह के ऑडिशन, जिसमें एक कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था। ऐसे 3 तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ। उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था, उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता। उसकी मां

0: अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है। वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो मां का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी मां।
1: उसकी मां।
0: इसमें मुझे मौका मिला काम करने का, तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते
1: फिर
0: हैं
1: से जिया आपने उसे, उस माहौल को।
0: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई। महाश्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरे को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया भादुड़ी
0: और
1: जी और अनुपम खेर के साथ।
0: जी जी जी जी जी तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे, जया जी जिनकी शुरुआत सती इतरे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए।
1: सुनते हैं गाना।
0: जी।

0: बोल यार हम
1: उंगली उठ
0: अपनी जीत हो
2: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है
3: जिसको
2: दिल से चाहो तो और भी आगे भी हम बात करेंगे आगे भी बहुत सारी चीजों पे मैनिफेस्टेशन हुआ है आपका
3: जी, जी, जी।
2: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे उसके बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे
3: जी, जी।
2: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया फिल्मों में आ गया अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं ऐसा कभी भावना नहीं आई
3: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था
2: अच्छा
3: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था
2: अच्छा
3: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था होस्टिंग कर रहा था एक्टिंग भी कर रहा था और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा समझे है ना तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी औधा भी होगा
2: बिल्कुल
3: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही बनाऊंगा और एक्टर नहीं क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे
2: जी।
3: तो मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था मैं उसको बुरा नहीं कहता लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो
2: मैं कलाकार एक आर्टिस्ट
3: बिल्कुल वो मेरा एक एक्सटेंशन था मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं अब मैं दो मीडियम में करूंगा तीन मीडियम में करूंगा तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था आप सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया ठीक है उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे रवि राय भी टेलीविजन में थे तो एक बहुत बढ़िया दौर था अच्छी राइटिंग का अच्छे डायरेक्शन का अच्छे कैरेक्टर्स का टेलीविजन का तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से डेली सोप नहीं बन रहे थे वीकली सोप बन रहे थे टेलीफिल्म्स बन रही थी मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में और सोचिए मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था तो महीने के महीने कमा रहा था तो एक तरह से आप सिक्योर भी हो गए है ना तो बहुत अच्छा था मेरे लिए तो बहुत बढ़िया दौर था फिर सिनेमा बना और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था क्योंकि वो दौर जो था ना एक तरफ तो एक्शन का दौर था अक्षय कुमार अजय देवगन सुनील शेट्टी ये लोग एक्शन के मास्टर्स
2: थे आ रही थी हाँ बिल्कुल
3: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था आमिर शाहरुख और सलमान ये लोग रोमांटिक फिल्म ही कर रहे थे
2: बिल्कुल
3: तो ये दो स्रोत चल रहा था सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर था
2: बिल्कुल
3: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे या ऐलान करेंगे या परदेसी उसमें जाएंगे
2: जी
3: या आप कहीं नहीं मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है
2: जी।
3: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है समझ रहे वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का एक बॉय नेक्स्ट डोर एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है तो उसको हम कहां फिट करेंगे इस तरह का वो था और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं तो मैंने भी नहीं किया
2: इस तरह के रोल में
3: जी मैंने वो कोशिश ही नहीं की
2: पर एक आर्टिस्ट के तौर पर ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं अलग अलग किरदार गढ़ते हैं

0: है, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर,
0: बिल्कुल।
1: हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे,
0: हाँ
1: आप समझ रहे हो। वो
0: बिल्कुल।
1: किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा
0: हाँ
1: बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया 1984 की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने टेलीविजन छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता,
0: हाँ
1: ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या, तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा,
0: जी
1: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ और यहां कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहां हिंदी फिल्में, कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया, तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था, वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने
0: जी
1: लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्यों, मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था, मैं
0: बिल्कुल
1: जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन
0: बिल्कुल
1: आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
0: बिल्कुल
1: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
0: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं
1: जी
0: उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत
1: ओटीटी
0: किरदारों
1: में
0: की
1: तो
0: जगह
1: हाँ
0: है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था
1: बिल्कुल,
0: वो
1: नहीं,
0: यहां
1: ओटीटी
0: पर
1: में
0: अभी।
1: एक अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं
0: जी
1: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो
0: बिल्कुल
1: ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में,
0: जी
1: मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चले जाता है,
0: जी
1: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने
0: बिल्कुल
1: सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
0: जी
1: गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं,
0: हाँ
1: लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में
0: जी
1: जो मुझे अच्छा लगा, ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां
0: जी
1: आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां
0: जी
1: वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। यहां सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
1: जी, मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं,
0: हाँ
1: बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
0: मंजिल
1: गाना
0: फिल्म
1: है,
0: से
1: वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
0: बिल्कुल
1: खाते हुए सुनते हैं उसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ।
1: जी
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा,
1: जी
0: क्योंकि वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है,
1: जी जी
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी
0: जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, पसंद किए गए हैं।
1: जी जी
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना, जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था।
0: जी
1: मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए, दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग। हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहाँ पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो
0: जी
1: बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए, पता नहीं, साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012, 18, बी मूवी करके की। और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया, और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी
1: उसका टेक्सचर मेरे से थोड़ा अलग है।
0: अच्छा
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए
0: जी
1: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था।
0: जी
1: वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, वैसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था। तो वो लाने की बात थी, तो उन्होंने मुझे चुना। तो फिर मैंने कहा करते हैं। फिर 11 साल तक वो करता रहा। मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा फिर।
0: बिल्कुल, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी
0: बिल्कुल, तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग
1: जी
0: इंडस्ट्री,
1: जी
0: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे बहुत, ठीक
0: अच्छा
1: है, तो वो भी अभी करने का मौका मिल गया है।
0: जी
1: वो वर्टिकल्स जो हैं वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं। वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताए जाते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है। तो अब वो उसका दौर आ गया, अब उसमें भी काम कर रहा हूं
0: बिल्कुल
1: मैं।
0: बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा,
1: जी
0: बहुत सारी बारीकियां, आपके अनुभव जो आपने साझा किए
1: जी
0: बहुत अच्छे लगे,
1: जी
0: और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके
1: जी
0: लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं,
1: थैंक यू।
0: और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध
1: आपका
0: भारती
1: भी
0: के
1: बहुत बहुत
0: स्टूडियो
1: शुक्रिया।
0: में आने का।
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर
3: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्य

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंढरा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पिंडारी, कोटराही, मदनपुर, गुरमुटी, सोनहत, नवगई, गैना, धौरा, बिशुनपुर, सिलाजू, उचेरवा, चीनिया, महावीरगंज, इंदरपुर, शिवपुर, रामपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, घासीडी, सरगा, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मयूर चूंदी, कुंजारा, पाकरटोली, ढोंगा आंबा, उपका पानी, कुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, झिक्की, खंताडाण, परसाडाण, पेटा, कुर्डेग, सामरबार, मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये कांसी पानी, जाम पानी, साजा पानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, चन्हाट, ताल दादर, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड

0: एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट अभी आप सुन रहे थे। प्रायोजक थे CF1 विभाग सरगुजा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का।

बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का गीत आपने सुना अदनान सामी और साथियों के स्वर में। कौसर मुनीर की रचना थी और प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम में आई श्रोताओं, अब सुनते हैं शांतनु मोहित्रा का लिखा और संगीत में भी रहा यह गीत। स्वर है शान के और फिल्म है थ्री इडियट्स।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य की यह रचना। संगीत शंकर एहसान लॉय का है, अरिजीत सिंह जिनमें श्रीपदा और साथियों की आवाजें हैं, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से।

चित्रपट संगीत का आप आनंद ले रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं गुलजार की रचना। प्रीतम का संगीत है, मुनाली ठाकुर, सोहम, आकृति कक्कर और साथियों की आवाजें हैं, और फिल्म है बिल्लू।

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसके साथ ही श्रोताओं, चित्रपट संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हुए हैं और समय है कार्यक्रम युवा जगत का।

नमस्कार साथियों, युवा जगत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गौरहा। दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं युवा जगत और आज की हमारी चर्चा है थोड़ी खास, क्योंकि आज की हमारी चर्चा का केंद्र होगी युवा शक्ति, संवेदनशीलता, अनुशासन और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देती है, यानी कि खेल। दोस्तों, हमने हमारे पिछले क्रम में आपसे बात की थी स्वास्थ्य की, जिसमें हमने चर्चा की थी कि कैसे हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आपको याद होगा कि कैसे हम बचपन में घंटों घंटों घर से बाहर रहकर न जाने कितने प्रकार के खेल खेलते रहते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम पर पढ़ाई लिखाई के प्रेशर बढ़ने लगे, हमारी जिम्मेदारियों तले कब ये खेल कूद हमारे जीवन से गायब हुए पता भी नहीं चला। दोस्तों, आज के दौर में पढ़ाई और करियर की दौड़ में हम सब अक्सर अपने शरीर और खेल को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ सोच का विकास होता है। खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाता, बल्कि हार को स्वीकार करना भी सिखाता है। साथ ही यह हमें सिखाता है कि कैसे एक बार हारने के बाद दोबारा कोशिश की जाती है। इसके साथ ही टीम वर्क और अनुशासन में रहना भी खेल ही हमें सिखाता है। मैदान में कोई भी खिलाड़ी अकेला नहीं होता, उसे साथी खिलाड़ियों पर भरोसा करना ही पड़ता है। यही सीख जिंदगी में भी काम आती है। साथियों, जरूरी नहीं कि आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने। रोज थोड़ा दौड़ना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन या कोई भी खेल खेलना हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाने से बेहतर है कभी मैदान में हम अपने कदम भी दौड़ाएं। और जब हम खेल की बात करते हैं तो भारत के एक ऐसे महान खिलाड़ी का नाम अपने आप सामने आता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनके खेल की ऐसी धात थी कि लोग उनके हॉकी स्टिक और गेंद के बीच के तालमेल को देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन दोस्तों, ध्यानचंद जी की महानता सिर्फ उनके खेल में नहीं थी, उनकी असली ताकत थी अनुशासन, मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। आज हम युवा जल्दी जल्दी सफलता चाहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की भी सफलता देखते हैं और सोचते हैं कि काश हमें भी ये तुरंत वैसा ही मुकाम मिल जाए। लेकिन हर सफलता की एक निश्चित कीमत होती है, जो हमें मेहनत से चुकानी होती है। ध्यानचंद जी का जीवन हमें बताता है कि प्रतिभा या टैलेंट हमसे हम किसी भी काम में शुरुआत तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए युवा साथियों, अपना लक्ष्य तय कीजिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से कीजिए। अगर खेल में रुचि है तो लगातार अभ्यास कीजिए। और अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बड़ा सपना देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उस सपने के लिए रोज़ एक छोटा सा कदम उठाना। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे हमारे कार्यक्रम का पहला गीत। लेकिन उससे पहले अपने कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि इस गाने के बाद हम आज के क्रम के सवाल पूछने वाले हैं और साथ ही पिछले क्रम में पूछे हुए सवालों के सही जवाब भी बताएंगे और आपने हमें जो ईमेल किए हैं उनके नाम भी बताएंगे। तो अपने कॉपी और पेन को रेडी रखिए और चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म प्रेम पुजारी से। आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत को लिखा है नीरज ने और संगीत से सजा

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पिछले हफ्ते के सवालों के सही जवाब। तो हमारा पहला सवाल था, छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? इसका सही जवाब है पंडित सुंदरलाल शर्मा। गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा जी को अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत अपना गुरु माना था। दूसरा सवाल था, किस अरब राष्ट्र ने मृत्युदंड समाप्त किया है? इसका सही जवाब है लेबनान। तीसरा सवाल था, किस राज्य

0: राज्य ने ग्रीन जीडीपी लागू किया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जिसने ग्रीन जीडीपी लागू किया है। ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं, जैसे कि स्वच्छ हवा, जल संरक्षण, कार्बन एब्जॉर्प्शन और जैव विविधता के आर्थिक मूल्य की गणना करना। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा वनों से आच्छादित है। चौथा सवाल था, कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है अश्मिता चालिहा। पांचवा और आखिरी सवाल था, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है प्रशांत महापात्र। 4 अगस्त 2026 को इन्होंने अपना पदभार संभाला। इसके पहले वे सेबी में ही चीफ जनरल मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए दोस्तों, आपने हमें ईमेल्स किए हैं तो जानते हैं कि चार सवालों के सही जवाब देने वालों के नाम। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। दतरेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। ग्राम पीपरलोड से सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गोरखपुर गौरेला से राजकुमार कश्यप, शिवकली कश्यप, प्रिंस कश्यप, इशिका कश्यप। डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और बाबू अल कबीर। अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया और खुमेंद्र मसिया। हमारे साथियों में से चार से कम सही जवाब देने वाले भी हैं, जिनके नाम हैं पेंड्रा रोड गौरेला छत्तीसगढ़ से दुर्गा प्रसाद साहू, आरती साहू। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन, माही सेन। कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। चलिए दोस्तों, अब पेन कॉपी से लिखिए और नोट कीजिए आज के सवाल। तो आज का पहला सवाल है, 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तीसरा सवाल है, किस ऐतिहासिक घटना के कारण महात्मा गांधी ने सन 1922 में असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था? चौथा सवाल है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पांचवा और आखिरी सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको भेजने हैं अगले बुधवार से पहले। हमारा ईमेल आईडी है yj.air.bilaspur@gmail.com। हमें आपके सही जवाबों का इंतजार रहेगा, तो जल्दी से हमें ईमेल भेजिए। बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आचे अगले क्रम की ओर, जो है समसामयिकी का। चलिए जानते हैं कि इस महीने की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में 3 स्वदेशी युद्ध पोतों को शामिल किया, INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। भारत सरकार ने हाल ही में देश के शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 1930 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपना 80वां क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत द्वारा विकसित पूरी तरह स्वदेशी और उन्नत काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र है, जो इसी महीने लॉन्च हुआ है। 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हाल ही में केरल राज्य में संपन्न हुआ। भारत सरकार द्वारा युवाओं के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ माय भारत। डूरंड कप 2026 का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं आज के हमारे युवा जगत का दूसरा गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म ममता से, आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है रोशन ने।

0: कृषि उपकरण है जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, किंतु तब जब इसका दुरुपयोग ना हो, अर्थात अपने मोबाइल फोन को कभी भी अनजान व्यक्ति के हाथों ना दे दे। हो सकता है आपके मोबाइल से पल भर में वह अनजान व्यक्ति आपका सब कुछ साफ कर दे, साथ ही इसमें कुछ ऐसी हरकत कर आपको परेशानी में भी डाल सकता है। इसी प्रकार अपने एटीएम कार्ड से पैसा निकालते समय पूरी सावधानी बरतें। ध्यान रहे, एटीएम कार्ड का 16 अंकों वाला नंबर या पिन नंबर आपके पास खड़ा व्यक्ति ना देखे, क्योंकि आपके एटीएम संबंधी इतनी भी जानकारी किसी साइबर ठग को हो गई तो आपका खजाना सुरक्षित नहीं रह सकता। सतर्क रहे। जली पिसदेव, बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।
1: दोस्तों, बात करें आज के इतिहास की, तो आज ही के दिन यानी कि 26 अगस्त सन 1910 को एक प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक नन का जन्म हुआ था, जो आज दुनिया भर में मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं। उनका जन्म नॉर्दर्न मैसिडोनिया में हुआ था। सन 1929 में वे कोलकाता आईं और यहाँ पे उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। उन्होंने यहाँ मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की। गरीब और लावारिस बीमारों की सेवा के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रम की भी शुरुआत की। मानवता की असाधारण सेवा के लिए उन्हें सन 1979 में नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, आज की हमारी चर्चा को एक बेहद संवेदनशील विषय की ओर ले जाते हैं। आपको मालूम होगा कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक 41वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश भर के विभिन्न अस्पतालों और केंद्रों में रैलियां, जांच शिविर व शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना। और नेत्रदान से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें भी हमें जाननी चाहिए, जैसे नेत्रदान में पूरी आँख नहीं बल्कि केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करने की सोचते हैं तो ये बात ध्यान देने लायक योग्य है कि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आँखें ले लेनी चाहिए। और सबसे खास बात, चश्मा पहनने वाले या डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान पखवाड़ा हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी खत्म होने के बाद भी हम किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में रोशनी का कारण बन सकते हैं। ज़रा सोचिए, जिस दुनिया को हम अपने आँखों से देखते हैं, नीले नीले आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे, अपने परिवार का चेहरा, दोस्तों की मुस्कान, सूर्योदय और प्रकृति के रंग बिरंगे रंग, अगर किसी व्यक्ति को इनमें से कुछ भी देखने का अवसर ना मिले तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। ऐसे में नेत्रदान का संकल्प किसी के लिए सिर्फ एक दान नहीं बल्कि नई रोशनी, एक नया जीवन बन सकता है। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखिए, नेत्र दान जैसे विषय में सही जानकारी और डॉक्टर से मेडिकल फैसिलिटीज़ की सही सलाह लेना ज़रूरी है। सोशल मीडिया की अधूरी या गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, आज हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है। हम इसका इस्तेमाल मनोरंजन के अलावा लोगों को सही जानकारी देने और जागरूकता फैलाने के लिए भी कर सकते हैं। हमारी एक सही जानकारी किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है

और किसी परिवार के लिए एक उम्मीद बन सकती है। दोस्तों चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हमारी बातें तो आगे भी जारी रहेंगी। चलिए सुनते हैं किशोर कुमार जी का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है इम्तिहान। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों, हमने जो आपसे सवाल पूछे थे, लीजिए सुनिए एक बार फिर से उन सवालों को। हमारा पहला सवाल था, सन 1857 के महान विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दूसरा सवाल था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तीसरा सवाल था, किस ऐतिहासिक घटना के कारण महात्मा गांधी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौथा सवाल था, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और पांचवा और अंतिम सवाल था, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों, आप हमें इन सभी सवालों के सही जवाब भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yj.air.bilaspur@gmail.com। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें की। मेरी तरफ से ये छोटा सा संदेश, दोस्तों, उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच को बड़ी होनी चाहिए। साधन कम हो सकते हैं लेकिन हौसला बड़ा होना चाहिए। और जिंदगी अपनी हो सकती है लेकिन उसमें दूसरों के लिए भी थोड़ी जगह ज़रूर होनी चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के युवा जगत से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास किसी एक इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी और उम्मीद ज़रूर जोड़िए। तब तक के लिए दीजिए श्रुति गौरहा को इजाज़त। नमस्कार।

युवा जगत का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

ग्राम सभा सुनिए शाम 7:30 पर। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा बागवानी फसलों की वर्षाकालीन देखभाल, साथ ही पर्व ईद और ओणम की चर्चा करेंगे। भेंटवार्ता में रेशम कीट पालन की जानकारी देंगे। ईमेल करें गीत सुने, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने हम लेकर आएंगे 6:20 पर और 7:00 से भी। सुगम संगीत में 8:00 सुनिए गायक कलाकार भूपेन हजारिका के गाय कुछ गैर फिल्मी नगमों को। कार्यक्रम रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी 8:15 पर। श्रोताओं, ये तो थे आज के कुछ प्रमुख आकर्षण। आइए जानते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को।

कल सुबह 6:05 पर सुनिए कार्यक्रम आराधना। खेती की बात का समय होगा 6:30, प्रातः 6:45 पर सुना जा सकेगा चिंतन। विषय होगा अति सर्वत्र वर्जित। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत कार्यक्रम माटी के स्वर हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर। सदाबहार नगमे सुनिएगा 7:30 से कार्यक्रम आपकी पसंद दिन में 10 बजे, और नए तराने की बारी होगी 10:30 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनिए 11 बजे। शाम 4 बजे दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे संदेश टू सोल्जर्स। कल शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम महिला सभा का प्रसारण होगा शाम 5:35 पर। इसमें स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन की बातें होंगी। क्रम लोक संस्कृति में भोजली गीत सुनवाएंगे। श्रोताओं के पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिली हम लेकर आएंगे रात 8 बजे। प्रस्तुत करेंगे मोनाली ठाकरे और नेमीचंद साहू। शास्त्रीय संगीत सुनिए रात 8:15 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लिया सकेगा कल शाम 5:05 पर। और ईमेल करें गीत सुने हम लेकर आएंगे शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। किसानवाणी का प्रसारण कल शाम 7:30 से करेंगे। इसे हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका मा काली देश भर मा खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के सम कार्यक्रम।

0: राखे जाही। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम ले युवा मन ले करही संवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा आज बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक नियमित रेल सेवा ला हरा झंडा दिखा के रवाना करिन। और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आज ईद मिलाद उन नबी श्रद्धा और उत्साह के संग मनाए जाते। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में काली 27 अगस्त के देश भर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के संग कार्यक्रम राखे जाही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वर्चुअल माध्यम ले देश भर के अलग अलग जगह मन में मौजूद 8 लाख ले ज्यादा युवा मन ले संवाद करही। ये कार्यक्रम ला हरेक जिला के 2 ठन प्रमुख महाविद्यालय में राखे जाही। एक तहत युवा प्रतिभागी मन ला स्थानीय खेल हस्ती सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि मन के संग सोझे गोट बात करे के मौका मिली। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट के एक ठिन युवा संवाद सत्र घलो राखे जाही जेखर माध्यम ले युवा अपन विचार आकांक्षा और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा सेवा तीर्थ मा प्रगति मंच के 53वां बैठका के अध्यक्षता करिन। ओमन कहिन के परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजना के योजना बनात समय जिहां संभव हो बिजली पानी और दूसरा सेवा पर साझा गलियारा विकसित करे जाना चाहिए। बैठका मा 9 राज्य ले जुड़े रेलवे सड़क और बिजली क्षेत्र के 6 प्रमुख परियोजना के समीक्षा करेगी जेखर कुल लागत 30,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू हा आज बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रखे गए कार्यक्रम में बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक नियमित रेल सेवा ला हरा झंडा दिखा के रवाना करें। ए मौका में ओमन कहिन कि ए रेल सेवा के नियमित संचालन ले बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच अवई जवई और ज्यादा सरल होगी। ये ट्रेन हरेक बुधवार के बिलासपुर ले मझनिया 2 बजे रवाना होगी और अवैया दिन संझा 7 बजे यलहंका पहुंची। लौटत में ये गाड़ी हरेक गुरुवार के रतिहा 9:30 बजे यलहंका ले रवाना होगी। ये ट्रेन भाटापारा रायपुर दुर्ग राजनांदगांव डोंगरगढ़ गोंदिया सिकंदराबाद रायचूर गुंदकल समेत आने आने स्टेशन ले होके गुजरही। रक्षाबंधन तिहार के दौरान यात्री मन के सुविधा पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल है स्पेशल ट्रेन चलाए के निर्णय ले है। एक तहत दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच 27 ले 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाए जाही। ये ट्रेन में कुल 10 ICF कोच रही जेमा 8 जनरल और 2 ठिन SLRD कोच शामिल है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कहिन है कि स्कूल मन में शिक्षक केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराए बर ही झन आवे बल्कि लइका मन के पढ़ाई ऊपर पूरा ध्यान देवे। उमन कहिन के लइका मन के पढ़ाई में ध्यान नहीं देत शिक्षक मन ऊपर कड़ा कार्रवाई करे जाही। काली रायपुर में रखे गए विभागीय समीक्षा बैठका में श्री यादव कहिन के प्रदेश के स्कूल मन में अवैया समय में छात्रा मन पर 8,000 ले ज्यादा शौचालय के निर्माण कराए जाही। उमन इहू बताइन के राज्य में 5,000 शिक्षक मन के भर्ती करे के प्रक्रिया जारी है। बैठका में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के संग्रह विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुई। रायपुर बिलासपुर दुर्ग और कोरबा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बस संचालित करे जाही। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया हा काली नवा रायपुर में योजना के तैयारी के समीक्षा करें। बैठका में रूट प्लान बस स्टॉप डिपो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लेके दिशा निर्देश देगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कुती। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह के संग मनाए जाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव

0: ईद मिलादुन्नबी माँ देशवासी मन ला शुभकामना दिन है। ए मौका माँ रायपुर समेत प्रदेश के बहुत अकन जगह हा मुस्लिम समाज हा जुलूस निकालत है। नगरीय प्रशासन विभाग हा नगरीय निकाय के पेंशनर मन के महंगाई राहत में बढ़ोतरी करे है। सातवां वेतनमान के पेंशनर मन ला अब 58% और छठवां वेतनमान के 257% के दर ले महंगाई राहत दे जाही। पेंशनर और परिवार पेंशनधारी मन ला 1 जनवरी 2026 ले एखर फायदा मिलही। प्रदेश में 1 सितंबर ले जम्मू श्रेणी के बिजली कनेक्शन के ई केवाईसी के प्रक्रिया शुरू होही। ई केवाईसी बर आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम के मिलान अनिवार्य होही। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिया अपन ई केवाईसी करा सकी। एखर बर कोनो तरह के शुल्क नहीं ले जाही। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ह इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़त मामला ल देखत लोगन मन ले सतर्क रहे के आग्रह करीन है। आईएमए के कहना है कि ज्यादातर संक्रमण हल्का होते और अपने अपन ठीक हो जाते, एकर भर घबराए के कोनो बात नहीं है। आईएमए हा लोगन मन ल फ्लू के लक्षण पर डॉक्टर के पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं ले के सलाह दीन। आईएमए है बताइन कि H1N1 में आमतौर में अचानक तेज बुखार और जाड़ लगे, लगातार सूखा खांसी, गला में खराश, मांसपेशी में बढ़ पीड़ा और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते। दूसरा लक्षण में सरदर्द, नाक बहे या बंद होए के संगरा उल्टी दस्त शामिल हो सकत है। 20 सितंबर के होवैया सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 ल अवैया आदेश तक स्थगित कर दे गए है। बता दन कि सुप्रीम कोर्ट ह राज्य सरकार ल न्यायिक अधिकारी मन के सेवानिवृत्ति के उम्र ल 60 बछर ले बढ़ा के 62 बछर या अंतरिम रूप ले 61 बछर करे ऊपर विचार करे के निर्देश दिन है। इकसेती ए परीक्षा अवैया आदेश तक स्थगित करे गए है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के अनिवार्यता के विरोध करत शिक्षक मन के मांग में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कहिन कि मध्य प्रदेश के जैसे छत्तीसगढ़ में घलो विभागीय परीक्षा लागू करे ऊपर विचार करे जाते। उमन कहिन कि ए सरकार की नहीं बल्कि ए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसला है। दुर्ग जिला के पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक मन की कमी ल लेके विद्यार्थी मन खैरागढ़ धमदा मुख्य मार्ग में विरोध प्रदर्शन करीन। प्रदर्शन के चलत ए रद्दा में अवई जवई बहुत बेरा तक प्रभावित रहीस। बाद में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ले फोन में आश्वासन मिले के बाद विद्यार्थी मन प्रदर्शन खत्म करीन। और अब थोरकुन समाचार सार मा। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी वरुण जैन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में प्रतिनियुक्ति में जाही। उख नियुक्ति पुलिस अधीक्षक पद में होही। राज्य सरकार हा प्रदेश के आने आने जिला में सहायक ग्रेड 3 के 100 ठिन रिक्त पद में सीधा भर्ती के स्वीकृति दे दे है। राजस्व विभाग संबंधित जिला कलेक्टर मल्ला भर्ती प्रक्रिया शुरू करे के निर्देश दे है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करे बर शासन डहार ले गठित उच्च स्तरीय समिति के उपस्थिति में काली रायपुर में बैठका रखे जाही। बैठका में समान नागरिक संहिता के आने आने प्रावधान, सामाजिक प्रभाव और व्यवहारिक पहलू मनु पर चर्चा करे जाही। और छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा ले लगे मलकानगिरी जिला में सुरक्षा बल आज माओवादी मन डहा ले लुकाए गए डंप बरामद करे है। एम हथियार, IED, क्लेमोर माइन और दूसर माओवादी जिनीस शामिल है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में काली देश भर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के संग कार्यक्रम रखे जाही। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम ले युवा मन ले करही संवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आज बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक नियमित रेल सेवा ला हरा झंडा दिखा के रवाना करीन। और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आज ईद मिलादुन्नबी श्रद्धा और उत्साह के संग मनाए जाते। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसके लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल।

राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप। राजकोट से हैं रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से खीक राम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनुष्का और तन्मय गजभिये। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सोंगा मगरलोड से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। पोड़ीभाठा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से मेल आया है रमेश चंद्र चौहान, मोहनी, कल्पित, गर्व और हिमाक्ष चौहान का। पांडरकौड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। भटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। त्यवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, नागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी। आप हैं दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्किन। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

अगले गीत के लिए मेल भेजा है महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलहत फरहत, रीप अत और नुजहत, साथ हैं साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, आप हैं रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गावया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, फ्रांसी हिसार से राजकमल ढूढ़ी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह ढूढ़ी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी, उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, दुर्राबांधा बांटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी, खमरिया से हमारे साथी हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कुमार कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा बड़सिंगी महाराज से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से हैं अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है, आइए सुनते हैं।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी, मालती चौधरी। भाटापारा से हैं बचका मल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदू, भुवन कुमारी। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश साहू। नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवहारकर, निर्मला और विशाल। गांव हीरावाली फलजीका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता। राजकोट से जोली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, रेयांश, सनी, कान्हा, आदित्य देवांगन। बम्हर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, घनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन।

आप हैं श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिर, सादुल शाहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़, मलौट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश निवान सौरभ शैना और मेंडी शर्मा, मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजमुल होदा एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी राघव भानु प्रिया माधुरी किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा रजत मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवरप्रीत सिंह और कमलजीत सिंह, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहानकर टुक टुक प्रिंस एकांश और सुमित और ध्वनि गवहानकर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत और मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो रोजी पर्ल विलिस डिकेस्टो, तेलहारा से हैं प्रकाश पोहरकर नर्मदा सुजाता पोहरकर, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटौदी जयंती हेमंत उमंग मोक्ष पटौदी, करनाल से सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा इशप्रीत शर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म कालीचरण का गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, और इसी गीत के लिए कुछ और भी नाम हमारे श्रोताओं के हैं, आइए उनको भी हम साझा कर लेते हैं। आप हैं कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नगमा अजीम। गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ, ऋचा देवांगन। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। दिल्ली से सोनम सना अदीबा। मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू गुड्डू जाजोरिया। दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना।

ना अश्वनी और विपुल कामड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मकार जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आप सभी ने भी फिल्म काले चरण के इसी गीत को सुनना चाहा है।

लता मंगेशकर की स्वर में आपने सुना इंद्रजीत सिंह तुलसी के रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और फिल्म थी कालीचरण। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने के पहले अंक को देते हैं यही विराम।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM-band 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे विज्ञापन और हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देश भर के 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में कल रायपुर में होगी राज्य स्तरीय बैठक। और ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कल 27 अगस्त को देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत युवा प्रतिभागियों को स्थानीय खेल हस्तियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र भी होगा, जिसके माध्यम से युवा अपने विचार, आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रूपये से अधिक है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आईएमए ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की सलाह दी है। आईएमए ने बताया कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में कल 27 अगस्त को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित न्यू सर्किट हाउस में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर येलहनका साप्ताहिक नियमित रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस रेल सेवा के नियमित संचालन से बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 7 बजे येलहनका पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी प्रत्येक गुरुवार को रात 9:30 बजे येलहनका से रवाना होगी। यह ट्रेन भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, सिकंदराबाद, रायचूर, कुतकल सहित विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने के रायपुर मंडल ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के बीच 27 से 29 अगस्त तक रक्षाबंधन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन में कुल 10 ICF कोच रहेंगे, जिसमें 8 जनरल और 2 SLRD कोच शामिल हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षक केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही ना आएं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में आने वाले समय में छात्राओं के लिए 8,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। बैठक में प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही विभागीय अधिकारी और सचिव शामिल हुए। प्रदेश में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों की EKYC की प्रक्रिया शुरू होगी। EKYC के लिए आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम का मिलान अनिवार्य होगा। उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के जरिए अपनी EKYC करा सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस्लाम
धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस ईद मिलाद उन नबी आज 36

छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डीका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने कल नवा रायपुर में योजना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रूट प्लान, बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। 20 सितंबर को होने वाली सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है

बस स्टॉप, डिपो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। 20 सितंबर को होने वाली सिविल जज भर्ती परीक्षा 2026 को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को न्यायिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष या अंतरिम रूप से 61 वर्ष करने पर विचार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस वजह से ये परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58% और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257% की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा टैट की अनिवार्यता का विरोध कर रहे शिक्षकों की मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी विभागीय परीक्षा लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का फैसला है। बिलासपुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 49 स्थित केसला टोल प्लाजा प्रदेश का पहला डिजिटल टोल प्लाजा बन गया है। इससे अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय नागरिक घर बैठे ऑनलाइन लोकल मासिक पास बनवा सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की इस सुविधा के तहत आवेदक राजमार्ग यात्रा ऐप या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए मासिक पास का शुल्क ₹350 निर्धारित है। रायगढ़ जिले के परसदा केराझर वाटरफॉल में आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि वाटरफॉल में कुछ युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने वाटरफॉल में आम लोगों के जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को वाटरफॉल में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी वरुण जैन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उनकी नियुक्ति पुलिस अधीक्षक के पद पर होगी। NIA में प्रतिनियुक्ति पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले IFS अधिकारी हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड 3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दे दी है। राजस्व विभाग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देशभर के 8 लाख से अधिक युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में कल रायपुर में होगी राज्य स्तरीय बैठक। और ईद मिलादुन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं। आयुष

अब आनंद लेते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइश फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के दूसरे भाग का। सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए मेल भेजा है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल ने। सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला, आसमा श्याम कुंवर। आप हैं लुथरा कमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी, ललिमा साहू, खुशान साहू, निशान साहू। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद और मिफरा नवाज चाहत। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। लुथरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श अतिका। डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। बागबहरा भदरसी से पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन। दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी। सामतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन। बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, नंदा हनुमान बोटके। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। नवाशहर पंजाब टोरेवाल से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वमिका और वाणी थांदी। मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सब्बा अंसारी। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत। आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन और अपार डिंगिया। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा। और पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे। आप सभी की पसंद पर आई, सुनते हैं ये गीत।

अगले गीत के लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, अंकिता जोशी और लक्ष्मी ध्रुव। आप हैं महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर, प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवन साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकर, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभी, अश्वनी साह, मंगला बेन शाह, राजेन्द्र साह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष, विनीत पटवा, कृष्टि पटवा, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश गवहानकर, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, भजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, और लसुड़िया पाता जिला राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी।

अगले गीत के लिए मेल भेजा है अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। यवतमाल से हैं पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्या रामटेके। बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या। आप हैं रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। बुड़गहान से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति। इसी गीत को सुनना चाहा है बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भारत मक्कड़। साथ में हैं कमल और शाहनी। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र सेन। साथ हैं रौनक सेन। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

बॉम्बे फिल्म का गीत आपने सुना। अब कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म बादल से लिया हुआ ये गीत। इस गीत के लिए मेल भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं बरेली कैंट चनहट्टी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार रागनी और मुस्कान, सरगांव से हैं राजेश वर्मा हीरोमन वर्मा पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, खोंधला उदयपुर सरगुजा के हमारे श्रोता साथी हैं जीवधन सिंह पैकरा घुरनी पैकरा करिश्मा, सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम हीरामणि ऐश्वर्या पैकरा, भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दकी, हमीदून जिशान शाहनवाज अहमद सिद्दकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू। आप हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल नारायणी सिंह रौल नोमेश सिंह रौल नेहा सिंह रौल और वान्या सिंह रौल। बिलासपुर के हमारे श्रोता हैं छन्नू लाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास रज्जन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास वाधानी भी साथ हैं। ये श्रोता हैं भाटापारा से दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत नीरज रावत शुभम सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना किरण लब्या आरव खुराना एस के पप्पी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला ओम कुमार सुरलकर, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले दुखनी सदप आरजू जूही इकबाल फूलवाले इमरान अहमद फूलवाले आमना नसरीन बागवान आसमा परवीन राबिया मंतशा आशु और अहमद फूलवाले, दिल्ली से प्रमीला हेमा और अंतरा सिंह और डुमराव से वलीउल्ला अंसारी सोनम वली और असमा वली। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है बादल।

फिल्म बादल के इस गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं और समय है ग्राम सभा का।

ग्राम सभा सुनैया जम्मो संगवारी भाई बहनी मन ला फुलुआ बहनी के माया भरे राम राम जय जोहार। सावन के महीना मा भरपूर पूर मगज पानी गिरत है संगवारी हुआ और धान फसल मा बहुत बढ़िया है धान फसल बर। फिर ज्यादा पानी गिरे ले ज्यादा पानी धान में रहे बर नुकसान घलक पहुँचते कीड़ा बीमारी संचर थे। ऐसा ही संगवारी हुआ बागवानी फसल के पौधा लगाए हवा तो आपके बागवानी माने बगीचा में पानी झन रुकाए माने के जल निकासी के व्यवस्था आपके बगीचा में खचित रूप में होना चाहिए। पौधा मान छोटे छोटे है ता खर पतवार जाम गए है तो ओखर निंदाई गुड़ाई करवाते रहा

पौधा मन जब में पौधा मन के पोषक तत्व ला एक हर पतवार जिन जामे हैं तिन मन झीक लेते तब पौधा के बढ़वार हा रुक जाते पौधा हा बाढ़े नहीं पाए। हमन बात करबो सब्जी फसल के अगस्त के आखिरी महीना आ गए है संगवारी हुआ और हमर किसान भाई बहनी मन अगेती फसल घर लगा सकत हैं और अगेती फसल जिन किसान भाई मन लगाते हैं वो मन ला बढ़िया मुनाफा मिलते जैसन के अभी के बेरा में लगा सकत हैं मुराई है पताल है भाटा है गोभी है ए मन ला अगेती फसल में लगा है तो बाजार में घलक मांग रथे और उत्पादन घलक बढ़िया रूप में पाए। चतुरा किसान संगी मन बेरा के संगे संग चलते और बढ़िया फसल उत्पादन लेते और लाभ पाते संगी हुआ। फल वृक्ष के देखभाल घलक अभी के बेरा में करना चाहिए। फल वृक्ष में बोईर है आंवला है बिही है अमरुद है इखर मन के जैसन के नवा फसल नवा पौधा अभी लगाए है और कहूँ थोड़किन छोटे है तो ओखर देखभाल घलोक ज्यादा करे ल पड़ते संगवारी हुआ। पौधा मन ल अभी छोटे छोटे है मन ल नवा पौधा मन ल सहारा देना चाहिए। कुछ लकड़ी है कि बांस है मन ल छोटे छोटे गड़िया के उ मन ल सहारा देना चाहिए। और अभी बारिश के दिन में ये पौधा मन में खचित रूप में अपन खर पतवार के निदाई गुड़ाई करत रह तब पौधा मन बढ़िया बाढ़ते और बरसात अभी सावन के महीना में कतका सुघर पानी गिरत है संगी हुआ। ए पानी हा पेड़ पौधा मन बर बढ़िया रूप ले अमृत होते और पेड़ पौधा भरवन नहीं हमार मनखे मन बर पशु पक्षी मन बर घलोक बढ़िया होते। मनखे मन के देखिया तो आजकल मुँह हरिया जाए रथे यानी नमी बाढ़ जथे रूप रंग मा चेहरा मा वैसन है पशु पक्षी घलो मन के और पौधा के बात करबो नार वाले पौधा मन ला देखबो तो एक बित्ता बाढ़ जथे संगी हुआ तो ए पानी हा बढ़िया अमृत के रूप में है तो काहे नहीं ये पानी ला बढ़िया जमा करके संजोग के इकट्ठा करके रखा जैसे पैसा जमा करथन हमन वैसन ही पानी ला घलोक जमा करके रखिया तो आगे अवैया दिन में पानी रही नहीं रही तो बढ़िया काम आही संगी हुआ। ये तो हुई गोड बात संगी हुआ। अब बेरा है एक ठन सूचना के तो हर एक शुक्रवार के संझा 7:30 ले फोन इन में आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते एमा किसान भाई कृषि उत्पाद पशुपालन मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए खातिर विशेषज्ञ मन लंग फोन में सवाल पूछ के समाधान पाते। यही कड़ी में बृहस्पत के 27 अगस्त 2026 के स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दुष्यंत कौशिक उपस्थित रही। इखर लंग बिहनिया 10:30 में 11 बजे तक सवाल पूछे पर विषय रही खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन ए विषय ले संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए खातिर हमार फोन नंबर है 2665 92 अब एक ठनाव फोन नंबर है 3100026। फोन लगाए के पहली बिलासपुर के स्टडी कोड है 07752 तो खचित फोन लगा है। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और प्रसारण 28 अगस्त 2026 के संझा 7:30 ले आज 8 बजे तक आप मन सुन सका था और सूचना सिर आगे संगी हुआ और वो संगी हुआ आज ए बढ़िया सुघर तिहार ईद और ओनम हमर मुसलमान भाई बहनी मन के यह प्रमुख तिहार है। ईद के पवित्र त्योहार रमजान के एक महीना बाद बहुत खुशी खुशी और भाईचारा के संग ईद मनाया जाते संगी हुआ और रमजान के आखिरी दिन में आकाश आसमान में चांद देखते ओखर बाद मनाते और जब बात होते ईद के तब आते मनमा के गुड़तुर सेवई के तो काहे नहीं भाई यही गुड़तुर स्वाद ला सेवई के खा के एक दूसर भाईचारा गले मिलके ए तिहार ला बढ़िया उत्साह और उमंग ले मनाते हमार मुसलमान भाई बहनी मन। वैसन ही संगी हुआ दक्षिण भारत में केरल राज्य के प्रमुख तिहार है ओनम 10 दिन के ए तिहार ला मनाया जाते। पर्व में घर में रिकिम के सजावट करके रंगोली बना के मनाए जाते जैसन के दिवाली तिहार ऐसन हा लागते। ए तिहार मनाए के प्रचलन है संगी हुआ। राजा बलि अपन राज्य में खुशी रहते तभी भगवान विष्णु नानक रूप माने 52 भगवान के रूप में

0: तीन पग भूमि के याचना करते और राजा बलिहर ए मांग के पूरा करते। संगे संग संगे हुआ ए मांग के भगवान ह भक्त के हरावे नहीं बल्कि ओला उद्धार करे बर आते संगी हुआ। संगे संग ए तिहार के प्रचलन है कि खेत में फसल के उत्पादन होए मा ए तिहार ला उच्छा उमंगले मनाते खुशहाली के रूप में तरह तरह के पकवान बना के केरा के पाना मा केरा के पाना करिया गैया संगी हुआ तो मन में एक ठन पवित्रता आ जाते। केरा के पाना में बढ़िया भोग लगा के जम्मो झन घर के मन के मन प्रसाद महाप्रसाद खा के नवा नवा कपड़ा पहन के खुशहाली मना के एक दूसर ल बधाई देते। तो ईद और ओणम तिहार के आप मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई संगी हुआ। और अब चलबो संगी हुआ आकाशवाणी गांव मा रेशम कीट पालन ले लाभ। श्री अनिल कुमार कश्यप सहायक संचालक रेशम जांजगीर जिला जांजगीर चापा। रिकॉर्डिंग और संपादन पंचु भैया के और प्रस्तुति और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। सुनिन आकाशवाणी गांव मा
1: संगी हो आज चलत हन आकाशवाणी गांव मा। और आकाशवाणी गांव के अंतर्गत शासकीय उद्यान रोपड़ी चारपारा आप मन ला ले जावत हन। विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम संपादन और रिकॉर्डिंग है रूपेश कंवर और हरीश माड़वा के। कार्यक्रम के संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। तो कौन प्रकार से किसान संगवारी मन और हितग्राही मन अपन अनुभव बतावत हैं संगे संग यहाँ के जिन विशेषज्ञ अधिकारी घलो हैं इनकरों से चर्चा करबो। तो चला थन आकाशवाणी गांव मा।
2: जय जोहार संगवारी हो, मैं श्रीमती राजेश्वरी पाटले परियोजना अधिकारी संगवारी हो। बेटी यह परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति होते और देश के उज्जवल भविष्य के आधारशिला घलो होते। ताले हमन देखथन कि बेटी मन शिक्षा स्वास्थ्य और समान अवसर के मामला में कई चुनौती के सामना करते और यही चुनौती दूर करे खातिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हाँ संचालित है। ये अभियान के जो मूल संदेश थे बेटी ला जन्म देना और ओला सुरक्षित शिक्षित करके उमन ला आगे बढ़ाए के अवसर देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है एमा बालिका मन के प्रति समाज के सोच ला विकसित करना है, सकारात्मक सोच ला विकसित करना है, बेटी मन के शिक्षा ला बढ़ावा देना है, उनकर अधिकार और सुरक्षा के प्रति जागरूक अभियान चलाए के खातिर समाज में व्याप्त जो लैंगिक भेदभाव है एला दूर करना शामिल है। आज हमन एक तरफ विकसित भारत के लक्ष्य ला लेके चला थन एमा बहुत जरूरी हो जाते कि हम बेटी मन के सबो जन के समाज के निर्माण में भागीदारी ला सुनिश्चित करें। एकर खातिर हमन ला ये भी समझना आवश्यक है कि बेटी केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हमार प्रयास है कि प्रत्येक परिवार है ये संकल्प ले कि बेटी ला जन्म देवें मन ला पढ़ाबो और मन ला आगे बढ़ाबो। रेडियो की सुनैया मोर संगवारी हो, महिला बाल विकास विभाग से हमन समय समय में कैरियर काउंसलिंग के भी कार्यक्रम आयोजित करथन। अभी यही महीना जुलाई में जिला स्तर में कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम आयोजित करे रहें। अकलतरा परियोजना में स्कूल में 11वीं 12वीं के लड़का मन जिन विषय लले के सशंकित रथे चुने बर कैरियर के खातिर जो मन ला शंका रथे एकर समाधान बर विशेषज्ञ बुला के करियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग के कार्यक्रम आयोजित करे हैं। एमा 10वीं से लेके 12वीं तक के बालिका मन लाभान्वित हुई हैं। जैसे कि अगस्त में हमन स्तनपान सप्ताह मनाथन, सितंबर माह में हमन पोषण माह के रूप में मनाथन सितंबर माहला। एमा पोषण के विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित करके जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके बेटी मन ला सशक्त बनाए खातिर पोषण के जानकारी देथन। जय जोहार संगवारी हो।
3: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। आए दिन अपन हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कति ले आकाशवाणी गांव के अंतर्गत गांव में जाथन। गांव के किसान भाई मन के अनुभव अपन के बीच में प्रश्न कि कैसे अभी बेरा में आनी पानी खेती किसानी करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते। अब यहाँ उद्यान में देखी थे संगवारी हो लगभग 70 से 80 महिला और अधिकारी और संगे संग ये क्षेत्र के प्रगतिशील किसान भाई मन हवे। आवा हमन चार पर उद्यान के अधिकारी करा गोड़ बात करत। राम राम।
4: राम राम।
3: का नाम है आपके?
4: शिव सिंह पैक।

0: सर।
1: बात करिए आज के, तो आज आपके उद्यान में बहुत बड़े प्रशिक्षण चलत हवे महिला मला लेके। कौन प्रकार से देखता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छा मुहिम उद्यान विभाग के माध्यम से एक नवा संदेश आज हमारे समाज ला दे जाते हैं?
0: देखिए, आज उद्यान विभाग और महिला बाल विकास के दोनों संयुक्त तत्वाधान में जो है आज जो है ट्रेनिंग है। इसमें जो है ये ट्रेनिंग में पोषण वाटिका लगाते ओखर वाले ट्रेनिंग है, समझ लेवा। इसमें सब्जी खेती कैसे करते, फूलों की खेती कैसे करते, मसाला की खेती कैसे करते, आयल पाम हो गए, फलदार पौधा रोपण, ये विभिन्न प्रकार की योजना से रिलेटेड है और कितना उमला लाभ मिल सका थे, ये सब के बारे में प्रशिक्षण दिए जाते। इसमें जैसे पोषण वाटी कम हो गए तो सब्जी भाजी लगा करके अपन जिसे घर है तो घर के जो पीछे में जो खाली जमीन रहते ओमा जो है खुद सब्जी भाजी सीजनली अलग अलग सीजन में बरसात बेलादार हो गए, ठंड सीजन में जैसे पालक मूली पत्ता गोभी ये सब लगा करके जमीन है ओखर सदुपयोग कर सके। उससे का है जिसे सब्जी वहाँ से जो मिल ही घर के वेस्ट वाटर जो है पानी जो है उमा यूज हो जाते और बाजार से खरीदते, तो एमा का है घर में जैसे पोषण वाटिका लगा है तो घर में सप्लाई घर में जो आवश्यकता है साग भाजी के वो पूर्ति हो जाते। और ऊपर से जो है बाजार में मतलब बहुत कम जाए ला पड़ते और ओखर से ओखर पैसा भी बचते और समय भी बचते और स्वास्थ्य भी अच्छा रहते। काहे कि बाजार में एक से एक से केमिकल वाला साग सब्जी आ गए है जो ला यूज कराते तो अनेक प्रकार की वहाँ बीमारी हो जाते। एखर ले जिसे पोषण वाटिका लगा है तो हम खुद रासायनिक खाद ज़्यादा ना करके उसमें घर के जो है सड़े गोबर ये सब यूज करके ओला जैविक करके अपन खुद ओला खाए बे यूज कर सका थे। और ओखर से का है पूरा जमीन को यूटिलाइज हुई, शरीर भी जही स्वस्थ, वातावरण भी रही, ओमा एक्सरसाइज भी हो जाही। तो इस प्रकार से जो है सब्जी की खेती कर सका थे, फूल भी वैसे कर सका थे, ओकर दोहरा आमदनी कमा सका थे। फूल की खेती जैसे गेंदा हो गए, गुलाब हो गए, रजनीगंधा हो गए, ये सब लगा करके जो है अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हैं जमीन में लगा करके। और विभिन्न प्रकार की योजना के अंतर्गत जैसे आयल पम्प भी लगा सकत है, जेकर बड़े खेत है, बड़े 2.5 एकड़ 3 एकड़ है, वो आयल पम्प के खेत लगा सकत है ड्रिप सिस्टम से, वह में पूरा उद्यान विभाग से पूरा अनुदान सब्सिडी है। या फलदार पौधा लगाते बने आम अमरूद नींबू कटहल वगैरह, तो ये इसमें भी जो है फेंसिंग बोर सब्सिडी है। और उस बीच में जो है सब्जी भाजी भी कर सका थे जो कर स्पेस रहते जगह जिसे 10-10 मीटर 9-9 मीटर की दूरी पे जो पौधा लगे रहते ओखर जो बीच में स्पेस रहते वहाँ सब्जी भाजी कर कर के दोहरा आमदनी कमा सका थे। इस प्रकार से यहाँ जो है प्रशिक्षण दिया जाते। और मसाला के भी कर सकते जैसे हल्दी अदरक अदरक लहसुन ये सब की खेती करके या अपन जगह खाली जगह है ओमा यूज करके अपन आमदनी ला दोहरा कर सकते। इस प्रकार से यहाँ प्रशिक्षण जितना भी यहाँ है महिलाएं उमन ला बताए जाते और ताकि मन अपन घर में खुद होकर ही और सेल्फ डिपेंडेंट बन ही इस प्रकार प्रशिक्षण चलत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जो
0: धन्यवाद।
2: संगी हो शासकीय उद्यान रोपड़ी चार पारा विकास खंड बलौदा मा बने दूरिया दूरिया ले हितग्राही लाभार्थी मन आ रहीन और माई लोगन घलो मन अपन अनुभव साझा करीन। तो आवा पंचू भाई मन का गोठ बात करत हिन इंकर से सुनत हन।
1: राम राम।
3: राम राम।
1: का नाम है आपके?
3: मोर नाम है सुमन।
1: यहाँ आए अपन किससे लगा था भाई यहाँ नवा जगह में?
3: यहाँ आके हमारा बहुत अच्छा लगा था। यहाँ के वातावरण भी एकदम बढ़िया शांत हवा। यहाँ बहुत प्रकार के पेड़ पौधा हमारा देखे बार मिला था।
1: अभी देखिए थे हमारे कथे किसान भाई मन धान पान लगा था और धान पान लगा था तो वहाँ मतलब मेहनत अब ज्यादा लगते है नहीं, खातू माटी के नांगर बैला के मेहनती के। अगर अपन परिवर्तन खेती डहर अगर फूल और फल के अगर पौधा लगावा था अपन आर्थिक स्थिति सुधार कर सकते ये बताओ आप।
3: हाँ हाँ, मैंने जैसे कि कोई भी वृक्ष छोटे से पौधा ला लगा के उखर में खाद पान डालबो अच्छे से ओला रखबो तो हम पेड़ पौधा हाँ बड़े हुई तो फल दी और फल दी तो ओला हमन ना बेच के अपन आमदनी कमा सकें।
1: अभी आप बताइए हमारे यहाँ प्रशिक्षण में कि कैसे अभी हमन गोंदा के खेती करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। तो बताता गोंदा के खेती के बारे में।
3: यहाँ सिखाई से कि गोंदा के वृक्षारोपण कैसे करते जेमा से हमन अपन आमदनी कमा सकन और जैसे ओला हमन ह उगा के ओला बड़े से करके ओमा से जो फूल मिलत है ओला हमन ह बेच के अपन आमदनी कमा सकत।
1: पहले के बेरा अब के बेरा में का परिवर्तन इस हवे गाँव के महिला मन लेके एला बताता।
3: तो पहले के समय में बहुत दुख के वाला समय चला, अभी तो हर चीज के हमन ल सुविधा उपलब्ध हो गए हवे। पहले के टाइम

0: तो घर के मन ह बड़े बड़े सदस्य मन ह निकले बर नहीं देते रहिस घर से बाहर। अब के समय ऐसे हो गए, सरकार भी अब के अच्छा हो गए हवय, जो कि हमन ला सरकारी मुफ्त म बहुत कुछ के सुविधा उपलब्ध हो जाते। स्कूल के पढ़ाई के बहुत अन्य प्रकार के सुविधा हमन ला मुफ्त में मिल जाते।
1: राम राम जय जोहार।
0: राम राम जय जोहार।
2: संगी हो, खेती किसानी म पशुपालन के अहम योगदान रथे, और पशुपालन करे म हमर खेती किसानी के जेन उत्पादन हे इहू हर बाढ़ते। तो आवा असने पंचू भाई मन हमर एक सफल पशुपालक हैं, इनकर से चर्चा करत हैं, ध्यान लगा के सुनिहा।
3: बात करिए अपन खेती किसानी के, तो अगर खेती किसानी करत हन, अगर घर में गाय गरुवा नहीं है, पशुपालन नहीं है, तो कहीं कहीं हमारे जो खेती किसानी अधूरा रहते हैं। बताता कि अभी के बेरा में कते कन गाय गरुवा रखे हवा एला।
4: मोर नाम देवेंद्र पाटिल है। आज हमन बलौदा चारपारा के उद्यानिकी विभाग में प्रशिक्षण शिविर में आए हवन। हम सब किसान भी हैं, बहुत किसान भी हैं और प्रशिक्षण में रहे हैं। बहुत अच्छा लगत है भाई, और पशुपालन से संबंधित और खास बात है आजकल, और गाय बछरू से दूध उत्पादन भी ओकर से मिलते हैं। मैं बाल बच्चा में दूध पिए हुए भी सब साधन भी मिलते हैं, और दूध उत्पादन करके अपन मिलते हैं।
3: आज कहीं कहीं हम फसल के लालच में आनी बनी के रासायनिक कीटनाशक रासायनिक खाद उपयोग करते हैं। गाय गरुआ का पालन करते हैं, तो जैविक खाद के माध्यम से अगर हम जैविक खेती करते हैं, धान की पैदावार बढ़ते हैं, अन्य फसल अपनाते हैं, पैदावार बढ़ते हैं। किसान मन लग कौन प्रकार से मन चेत करी ध्यान दी कि जितके ज़्यादा हुए हमन थी जैविक खेती डहर आगू बढ़ी।
4: पशुपालन से बढ़ाबो, पशुपालन रखबो तो ओकर से जो अगर गोबर खाद के उत्पादन हो, गोबर खाद से खेत में डालबो तो ओकर खेती खाद धान के उपज जो पैदावार है तो अच्छा से बढ़ी हो। अगर
3: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
4: राम राम।
3: राम राम।
5: राम राम।
3: का नाम है आपके?
5: दरस राम लहरे।
3: कहाँ किया?
5: मैं तो रहे खैजा नावा पारा के।
3: अच्छा अच्छा, बलौदा पास।
5: हाँ, बलौदेज के पास है। और आज हम यहाँ आए हैं उद्यान में, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा पेड़ पौधा लगा थे, लगे है, ओला देखे ल मिली से, और कुछ कुछ बताते हैं मन। अब हमारे उत्ती तो खेती किसानी करता न हम वहाँ अपन गांव तरफ।
3: अच्छा अच्छा।
5: और यहाँ तो बढ़िया बढ़िया पौधा उधा के बारे से बताते हैं, और ओला देखे ल मिली से।
3: अच्छा अच्छा। बात करिए अभी हमारे खेती किसानी बूता काम में भद्रा है। हाँ, आपके गांव का देख का बूता काम चला था एला बताता आप।
5: हाँ हाँ, अभी वही रोपाई उपाई चला थे, खेत में निंदाई उंदाई चला थे, और वही बूता अभी चला थे। ये साल बारिशों बहुत ज्यादा माले शुरू ले हो गई, बग उग के मौका नहीं लगी, तो रोपाई वाला तैयारी करे हन, ऐसे टाइप चला थे। अभी
3: लहरा तो आधा खत्म ही
5: हो चुका है। लहरा भी चला थे।
3: उद्यान विभाग का लबड़ की योजना हवा, का योजना के लाभ ले है इला बताता आप।
5: अब उद्यान ले अब पौधा उधा लगाए हन कुछ कुछ अपन खाए पिए बाड़ी उड़ी माँ, बिही उही है, आमा है, अमुनगा उनगा है, ऐसे टाइप के लगाए हमन। हाँ, बताए हैं ते हिसाब से। हाँ हाँ,
3: सरकार का तिल अबड़ की योजना संचालित हवा, और हर योजना के उद्देश्य रहते कि गांव के लोगन मन ला सशक्त बनाना, आगे बढ़ाना। किसान सम्मान निधि हमर का आप ला प्राप्त होते?
5: होते होते हमर ला होते। जैसे मोदी वाला पैसा है ना, वहा होते सोसाइटी ले अपन खाद वाद सब मिलते के दवा।
3: पहले की बेर अब की बेर में का परिवर्तन इस हवा किसान सम्मान निधि ला लेके, जिसे सही बेर हमर मिलते, अभी निंदाई कोड़ाई के बेरा है, अभी अगर पैसे मिलते तो का है, पहले मतलब बनिहार पैसा दे फिर फैल पड़े। अब सही बेर मिलते,
5: अब सही टाइम में मिलते।
3: बताता का खुशी है तेरे?
5: एमा बहुत अच्छा है, एमा मोदी है, हमार सरकार है, मतलब हमार उसका सहायता दे है। पहले तो हमन पैसा उसा के बहुत तंगीत पड़ा है, बनिहार उनिहार दे वाले कोई कोई भी के ऐसे। अब हमारा उमा सहूलियत पड़त है, हर महीना माने तीन महीना में माने 2000 हमारे मिलत है, वो हमार बहुत अच्छा काम आत है, और समय में हमारे वह ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम आत है। नहीं रहे थे टाइम में ना हमार उमा के काम चला थे, कुछ कुछ हमार उमा उपयोग कर था नमा।
2: संगी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत में घलो जेन हमर दीदी बहनी हिन एमन आघू बढ़त चले जाथिन, और सिलाई मशीन के द्वारा घलो एमन अपन पैर में खड़ा होइन। तो अब इनकर से गोठ बात सुनत हन।
3: राम राम।
6: राम राम भैया।
3: का नाम है आपका?
6: मोर नाम आकांक्षा यादव है, और मैं बलौदा के रहने वाली हूँ। चार बार यहाँ ला बहुत सारा पेड़ पौधा भी हमला देखे बार मिले है, और हमला बहुत सारा सीख भी मिली से, और सिलाई के भी हमन ला कुछ कुछ बताई गए है। और मैं पहली ले जांजगीर ले भी मैं सीखे आए हूँ, घर में भी सीखे हूँ, तब जाके मोर कुछ

0: कुछ काम भी बढ़े लगी से, बाहर ले पैसा भी आए लगी से, ग्राहक भी आए लगी से, तमाम मोर घर के हर एक काम हो जाते, हर एक मुश्किल भी के हल हो जाते। दूसर मन ला नोनी बहनी मन ला भी सिखा सकत हूँ, बतात हूँ, और कई झन मोर करा सीखे बर भी आगे हवय।
1: पहले इसे रिसे कि हमन अगर कुछ भी कापी पुस्तक पेन लेला जरूरत पड़े तो दाई दादा कर हमन पैसा अब हाथ फैलावन। अब ऐसे कि आप खुद पैसा कमावत था और घर के बल्कि साग सब्जी आप खुद पैसा देवत था, कैसे ना खुशी लगते इला बताओ आप।
0: मोला बहुत खुशी लगथे कि मैं अब खुद कमाए बर लग गए हवाऊँ, और मोर घर के भी खर्चा अब पैसा आ जाते, और कुछ कुछ सामान भी मैं ले आता हूँ।
1: अभी आप आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर में सुनत हवा, और ओहू मन चाहत हवा कि आप मन जैसे घर से निकल के बाहर कुछ कुछ बुतक हम सीखे और दोहरा दोहरा आमदनी कमावाए।
0: मैं आकांक्षा यादव जितना भी रेडियो ले सुना था, तेमा हर एक काम छोटे बड़े नहीं होए, सब अपन अपन एक काम होते। और आप मन हाँ सिलाई, ब्यूटी पार्लर और खेती वेती करके के पैसा भी कमा सका था, मेहंदी भी सीख सका था। और हर एक काम छोटे बड़े नहीं होए, धीरे धीरे हर एक काम के हल भी हो जाते, पैसा भी आए बर लग जाते, और हर एक घर में के दुख भी हट जाते।
1: बहुत अच्छा लगी से इतका जानकारी बताया कि काबर की नान्हे उम्र में आप इतका बड़े उपलब्धि सफलता हासिल करा। वही बेरम फिर अपन कर गोड़ बात करबो। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
2: संगीओ, आकाशवाणी गांव के क्रम में पहुना बन के आईन श्री केडी महंत, आप हव वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा के, और कौन प्रकार से हमारा खेती किसानी में ध्यान रखना चाहिए, कुटीर उद्योग के बारे में आप मन बतावा था। संगे संग अभी के बेरा में फसल के कैसे देख रेख करे जाए, बियासी में कौन हिसाब से हमारा चेत रखे जाए, संगे संग प्रशिक्षण में ट्रेनर के रूप में घलो आए रहो, तो सुनत हन पंचू भाई मन के हुए गोड बात।
1: संगवारी सुना कतेक बढ़िया जानकारी बताइन हवा यहाँ के दीदी मन की, कैसे अभी बेरा मानी बनी के खेती किसानी कर हमन दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। आज देखबो तो आकाशवाणी गांव के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के डी महंत मन घलवा है, आवा इंकर कर सुनत हन का अभी बेरा में बूता काम चलत हवा।
3: जय जोहार संगवारी, मैं डॉक्टर खेमादास महंत। आज बड़ा अच्छा अवसर है कि आज जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे सर के मार्गदर्शन में फसल विविधीकरण के जो क्रम है उसमें हमन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मन और उद्यानिकी विभाग के विशेष सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के योजना अंतर्गत जो है हमन महिला बाल विकास से जुड़े हुए और जो पशु सखी कृषि सखी और जो महिला कृषक है मल्ला फूल फल और मसाला की खेती के बारे में हमन बताया था। साथ ही साथ जांजगीर चांपा जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से फूल के खेती के काफ़ी ज़्यादा बढ़वार हुए थे, चाहे वो में गेंदा के खेती हो, गुलाब के खेती हो और कार्नेशन के खेती हो, गौमूत्र के प्रयोग के जानकारी, गोबर के सही प्रबंधन, केचुआ खाद के उपयोग के प्रबंधन के बारे में छोटा छोटा जानकारी ला उपयोग कर ही तो निश्चित रूप कर सब्जी फल और फूल के बहुत अच्छा खेती हो ही, वो मतलब फायदा भी हो ही और साथ ही साथ खर्चा में भी ओमन के धीरे धीरे कम हो ही और मतलब अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक फायदा भी हो।
1: किसान भाई मतलब का बात के चेत करना चाहिए अभी बेरा में, जिसे रोपाई पूरा हो गए हैं और कते झन मन के निंदाई तो अभी चला था, तो ये बेरा कौन बात के चेत लग करे खेती किसानी में बताता पानी कंजी खातू माटी कीट बर।
3: बहुत बढ़िया, आप जागरूकता के एक विषय आप मतलब सामने लाए हैं, चूंकि अभी जो जतका रोपाई वगैरह है बीज बोआई है सब एक तरह से लगभग ले ही जो भी विधि से अपनाते हैं किसान भाई उमन करदारीन है, तो सबसे चूंकि अभी बरसात होती है कुछ दिन में ही जो है अब पानी के जो है थोड़ा सा अंतराल में पानी हुई होकर बस सब ले चाहिए कि अपन पानी ला ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें, मेड़बंदी ला थोड़ा सशक्त ढंग से बंधवार करें बंधाई करें। और उसके बाद जो है अभी कुछ कुछ पानी गिरा थे तो तना छेदक के काफ़ी थोड़ा थोड़ा दिखे वाला लगा था किसान मन के हमला फोन आते, तो मतलब चाहिए कि सही दवाई के प्रयोग करना है और शुरुआत में ही हमला ज़्यादा कड़ा दवाई का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड है हो ऐसे छोटे जो कम असर वाला दवाई है। और किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के हमला फ़ोन करके हमला निश्चित रूप से हमला बताएं ताकि हम लोग निदान कर सकी। और साथ ही साथ उर्वरक प्रबंधन हमन देखते हैं, जैसे हमन अभी यूरिया के जो हमारे प्रयोग करता ना डीएपी के एक बार प्रयोग कर रहे हैं बेसल डोज के रूप में, तो हमारा चाहिए कि यूरिया ला 3 से 4 बार में हमारे स्प्रिट के माध्यम से दें ताकि अगर ज़्यादा हम नाइट्रोजन दे देबो तो हमारे फसल का होते वो बढ़वार अचानक बढ़ जाते और क्लोरोफिन कंटेंट जब बढ़ जाते तो में जो है कीट व्याधि के में ज्यादा प्रकोप हो जाते और फसल गिरे के भी समस्या होते। ओकर बर हमन यूरिया ला बहुत ही सोच समझ के और स्प्लिट में डोज के माध्यम से

प्रयोग करना पड़ते। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब धीरे धीरे ठंड आते, ठंड आई में हमारे जो खासकर जो कुछ सब्जी वर्गीय फसल है वाला भी हमारा साथ ही साथ मेड़ में, साथ ही साथ जो हमारे घर के जो बाड़ी है ओकर में भी हमारा सब्जी के भी हमारा अच्छा रेट भी मिली। और दिवाली आए के पहली भी हमारा थोड़ा थोड़ा अपन घर में जो किचन गार्डन है ओमे फूल के भी खेती ला, चाहे वो गेंदा के खेती हो, चाहे चाहे गुलाब के प्रवर्धन के खेती है ओला भी बढ़ावा देते हुए।

0: फूल के भी खेती ला, चाहे वो गेंदा के खेती हो, चाहे चाहे गुलाब के प्रवर्धन के खेती है, ओला भी बढ़ावा देते हुए अभी मुनगा और पपीता ला भी अपन घर में हर एक किसान भाई मल्ला दीदी मल्ला चाहिए कि हर घर में एक मुनगा के पेड़ हो, हर घर में पपीता के पेड़ हो, जेकर से आप ला सही में विटामिन प्रोटीन और उचित मात्रा में जो आपके पोषक तत्व है वो आप मन के शारीरिक जो खान पान के जो चार्ट है वो में वाला शामिल किए जाए, तो निश्चित रूप से हमारे एक उचित पोषक के साथ साथ खेती के सही तकनीक। और अभी आपन देखिया कि नया तकनीक भी आप जैसे आप मन दवाई खाद के जो उपयोग है ओकर बार हमार ड्रोन के माध्यम से भी 8 मिनट में 1 एकड़ के बढ़िया दवाई के छिड़काव के भी तकनीक आ गए है, तो किसान भाई मल्ला ये बहुत एकर कम खर्चा भी है, लेबर के भी समस्या ला या अधिक इधर एक तरह से हल भी करते, तो हमला चाहिए कि हमला ज़्यादा से ज़्यादा ये तकनीक का उपयोग करते हुए किसान भाई मल्ला हमला कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के काम करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया जानकारी बताए, एक बार राम राम धन्यवाद।
0: जय जोहार, धन्यवाद।
2: आकाशवाणी गांव के क्रम में आप मल्ला आनी बानी क्या न अनुभव ला सुनावा थन किसान संगवारी मन के संगे संग एम विशेषज्ञ और हमर पहुना मन घलुआ है, तो ऐसने कड़ी में आप हो श्रीमती कल्पना सिंह प्राचार्य हो आप मन और आप मन बताहा आरोग्य उत्सव कार्यक्रम के तहत मिलेट फसल के जानकारी जैविक खेती के बारे में तो सुनथन पंचू भाई संग का हो है गोट बात में।
3: नमस्कार, मेरा नाम कल्पना सिंह है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जांजगीर छापा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप सभी के साथ मिलेट्स जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, जो छत्तीसगढ़ महतारी का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मैंने अपने विद्यालय के सभी बच्चों को बताया है कि बच्चों हम उस पावन भूमि पर निवास करते हैं, उस बस्तर दंडकारण्य जिसने राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया था, उस पवित्र भूमि पर जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े उसी मिट्टी में मिलेट्स का खेती होती है। और मिलेट्स की जो खेती है वो हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ही नहीं, समस्त भारत देश के लिए, इवन पूरे विश्व के लिए एक वरदान है, क्योंकि मिलेट्स अलग अलग, जैसे कि मिलेट्स में आता है रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इन सभी में इनके जो पोषक तत्व हैं वे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। कोदो चावल के रूप में, जो कि डायबिटीज़ टाइप ए, डायबिटीज़ टाइप बी के जो मरीज़ होते हैं जिनको चावल खाने से मना किया जाता है, उनके लिए कोदो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे वे चुन सकते हैं। बाकी जो अदर मिलेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं, शरीर के मसल्स बनाते हैं। और
4: अभी सुने आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत चारपारा उद्यान की विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा और एकर रिकॉर्डिंग और संपादन रही से पंचू और बैसाखू भैया के, प्रस्तुति और संयोजन रही डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के संगी हुआ। और अब बेरा हो गए घर जाए के, तो जम्मो कार्यक्रम सुनैया भाई बहनी मन फुलवा बहनी ला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।

कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2। रात्रि के 8 बजे हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं सुगम संगीत का। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायक कलाकार भूपेंद्र हजारिका के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। पेश है ये पहला गीत।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। और आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार भूपेन हजारिका के गाए कुछ नगमे को। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम में अगला गीत।

और इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए गायक कलाकार भूपेन हजारिका के गाए कुछ नगमों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, दिन भर की भाग दौड़, काम की व्यस्तता, जिम्मेदारियों का बोझ और न जाने कितने विचारों को अपने भीतर समेटे हुए जब हम रात बिस्तर पर आते हैं तो लगता है अब बस थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए और चाहिए एक मीठी नींद जो सुबह हमें नई ऊर्जा के साथ जगाए। और इन सब के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम रजनीगंधा खास आपके लिए। और आज के संक में आपके साथ हूं मैं, महावीर वर्गा। कीजिए हमारा स्नेहिल नमस्कार स्वीकार।

दिन भर की थकान को अपने राग आंचल में समेट लेती है श्रोताओं। नींद आती है तो जिंदगी के कुछ पल मुस्कुरा उठती है। सचमुच नींद प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हम सोते हैं लेकिन हमारा शरीर और मस्तिष्क अपने अपने कामों में लगे रहता है। शरीर की थकान को आराम और मन के विचारों को विराम यदि कोई देता है तो वो है नींद। लेकिन आज की जिंदगी में नींद भी हमारी व्यस्तता का हिस्सा बन गई है। देर रात तक मोबाइल देखना, लगातार स्क्रीन पर बने रहना, पढ़ाई काम की चिंता मन में चलते रहती है और साथ ही साथ चलते रहती हैं कई दुविधाएं और अगले दिन की तैयारी भी। इन सब के बीच शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन मन कहीं न कहीं दौड़ रहा होता है।

जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो। मत उलझो प्रश्नों के जाल में, बस आज की रात खुद को चैन से सो जाने दो। मित्रों, अच्छी नींद के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, वो है मन को धीरे धीरे शांत करना। सोने से पहले अपने दिन को एक बार याद कीजिए, लेकिन हाँ, अपनी गलतियों की अदालत मत लगाइए। अगर आज कुछ अच्छा हुआ है तो उसके लिए शुक्रिया कहिए, अगर कुछ बुरा हुआ है तो उससे सीख लेकर वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि कल फिर एक नया दिन होगा और यही उम्मीद हमें आगे बढ़ाती है। नींद हमें सिखाती है कि जिंदगी में रुकना भी जरूरी है। जिस तरह लगातार चलती हुई गाड़ी को कुछ पल के लिए रुकना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी आराम चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कभी ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपने लिए समय निकाल रहा हूं? अपने शरीर की सुनिए, थकान को पहचानिए, मन को आराम दीजिए और रात को रात ही रहने दीजिए, उसे चिंता का कार्यालय मत बनाइए।

तकिए पर सिर रखकर जब आंखें बंद करो, दिन भर की उलझनों को थोड़ा सा मंद करो। कल की फिक्र कल पर छोड़ देना, आज की रात खुद को खुद से दोस्ती कर लेना। मित्रों, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए पर्याप्त और नियमित नींद जरूरी है। उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार नींद की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात सभी के लिए समान है, अच्छी मीठी नींद हमारे शरीर और मन के लिए आवश्यक है। और इसके लिए पहले तो मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाइए। अगर मन में बहुत सारी बातें चल रही हों तो उन्हें दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातें करना भी मन को हल्का कर सकता है, क्योंकि कई बार नींद आंखों से नहीं सुकून से आती है। वैसे श्रोताओं, हर रात हमें एक खूबसूरत मौका देती है अपने आप से मिलने का। हर दिन हम दूसरों के लिए जीते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लोगों से मिलते हैं।

लेकिन रात के ये कुछ पल सिर्फ अपने होते हैं, उसमें सुकून तलाशिए, उसे साझा न कीजिए। और यदि इसे भी साझा करेंगे तो नींद की तलाश आपकी जारी ही रहेगी।

श्रोताओं, आज की इस रात में अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए। चांद को देखिए, आसमान को महसूस कीजिए, बादलों से बातें कीजिए, ठंडी हवाओं को सुनिए और खुद से इतना कहिए कि मैंने आज जितना कर सकता था उतना किया और जो रह गया उसे कल पूरा करूंगा। आज मुझे आराम चाहिए। और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत होने दीजिए, क्योंकि रात की चादर में जब सुकून उतर आता है तब थका हुआ मन भी मुस्कुराता है। एक नींद कोई आराम का नाम नहीं है, ये जिंदगी को फिर से जीने की ताकत दे जाता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या और ठीक 9 बजे अंग्रेजी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए।

0: बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के

0: ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پوری گھاٹی میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند مسجدوں اور درگاہوں میں جمع ہوئے اور خصوصی نمازوں اور

0: मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिस घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक

0: ये सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
2: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for Akashvani News, Delhi.
1: Security officials said at least 93 people

ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सफर फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहाँ भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था। काफ़ी साल मुझे उसमें, एक 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट देता था, कहीं फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहाँ से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफ़ी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक। तो 5 साल का सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहाँ से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह के आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही शार्प।

0: बिल्कुल गोविंद नारायणी टाइप सोचते हो तुम, आप
1: जी
0: कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर रामगोपाल
1: जी
0: वर्मा
1: जी
0: जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति जो पिक्चर थी, जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुना जी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुना, ये तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चली गई, पता नहीं
1: पता
0: चला
1: नहीं
0: किसी
1: चला।
0: को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और
1: जी
0: खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: लेकिन आपकी अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ, बोल के किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहाँ ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं

0: अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार बालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि ये पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती अच्छी पिक्चर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए काला पानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में। तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना रहा था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा। और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरे कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक। तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखाया कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया। तो हमने वही डिसीजन लिया, और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
1: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें। सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले

हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी, अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा बरस से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से उसने काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
2: जी।
1: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
2: जी।
1: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
2: जी,
1: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज थ्री होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने के मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज 3 उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म 2008 में, फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी

सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देखिए।

जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहां जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हीरो

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

आइए सुनते हैं छाया गीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, कहते हैं जब विचारों की दौड़ लगती है तब शब्द आजाद परिंदों की तरह अपनी बनी बनाई तमाम बंदिशों को तोड़ देना चाहता है। ठीक वैसे ही मेरा ये बंजारा मन, या यूं कहूं बंजारापन, कहां चैन से सो पाता है भला। जीवन की कठोर यात्रा में खुद को ढूंढ रहा होता है एक बंजारे की तरह, इधर उधर तलाश रहा होता है अपना ठौर ठिकाना आजाद पंछी की तरह। बेहद मुश्किल है बंजारा मिजाजी, ये बंजारापन। गुलजार साहब तो कहते हैं रात चांद और मैं तीनों ही बंजारे हैं।

कहाँ होता है बंजारों का कोई घर या अपना शहर। मुसाफिर होते हैं, पीठ पर बिछौना साथ लिए घूमते हैं इधर उधर। जंगल संस्कृति के लोग, नदी सभ्यता से जैसे कोई नाता नहीं। बस ऐसे ही मैं और मेरा बंजारा मन। जिंदगी में जिंदगी ज्यादा चाहता है, सजावट कम। धूप और हवा चाहता है, पर्दे कम। सार्थकता चाहता है, फर्नीचर कम। जीवन भर खुद को ढोया, खुद से कभी ना हारी हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं।

जावेद अख्तर साहब अपनी एक नज्म में लिखते हैं, मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन वक्त के इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में आकर, वक्त का अब वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। वो सारे दिन जिनके कंधे पर सोती हैं अब भी तुम्हारी जुल्फ की खुशबू, सारे लम्हे जिनके माथे पर रोशन अब भी तुम्हारे लम्स का टीका, नम आंखों से गुमसुम मुझको देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं।

एक ओढ़ी हुई जिंदगी को छोड़कर अक्सर तन मन और जीवन बंजारा बन जाता है। देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं बंजारे ही तो हैं, कोई काम की तलाश में, कोई घर की तलाश में और कोई खुद की तलाश में भटक ही तो रहा है। जीवन की इस कठोर यात्रा में भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ प्यार और सुकून का सहारा ढूंढ रहा होता है ये बंजारा मन।

आवारापन, बंजारापन, न जाने कहाँ कहाँ भटक आता है निरंकुश होकर। रात्रि की निस्तब्धता में घर के कोने से लेकर मन के आकाश तक बेधड़क और निडर होकर। किसी ने क्या खूब लिखा है, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं न चिंगारी, हो न हो इस बार कोई खाब जला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, एक खला है सीने में।

सामिन, वक्त वक्त की बात है। वक्त का सफाक बहाव जिंदगी को नित नए सूरतों से दोचार करता है। कभी सूरत खुशगवार होती है तो कभी तकलीफ दे। कभी कभी मन स्वयं को अधूरा और उबाऊ महसूस करता है और कभी ये फक्कड़ मन दुनिया के शीर्ष पर जा पहुंच जाता है। और ऐसे में जब आपका ये आवारा मन समुद्र की लहरों के साथ अटखेलियां करने लगता हो तो उसी पल नाव की डोरी उतार फेंकें। हाँ, हवाओं को पकड़ें, खोज करें, सपने देखें और उस सुरक्षित बंदरगाह से दूर, बहुत दूर दूर कहीं चले जाएं। किसी ने सच ही तो कहा है, थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में। कैद में रहकर परिंदे अक्सर उड़ना भूल जाते हैं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का,
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: यादें।
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
0: अनमोल यादें
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 11 बजने को हैं। हिंदी में समाचारों के लिए जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्र